ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026 सुबह के 5:57 होने को है। हमारी आज की सभा अब प्रारंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं हिंदी समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी

0: राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस। स्वर थे अनुराधा पौडवाल और साथियों की। संगीत संयोजन था सतीश भाटी।

यका ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। सुविचार। अहंकार और संस्कार में बहुत फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर दुनिया जीत लेता है। इसलिए अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। इस विचार के पश्चात आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म खानदान से सुनिए गीत, नक्श लयालपुरी के बोल, खय्याम की संगीत।

अमित कुमार की आवाज़ में फिल्म तेरी कसम से सुनिए गीत, आनंद बख्शी के बोल, आर डी बर्मन का संगीत।

फिल्म संगीत का आखिरी गीत सुनिए फिल्म बेताब से। इसे गाया है शब्बीर कुमार ने, लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत।

हेलो हाय गुड मॉर्निंग नमस्कार सुप्रभात। नई सुबह नई उम्मीदें और नए एहसास लेकर 18 जून की ये खूबसूरत सी सुबह आपके दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। कहते हैं कि सूरज हर रोज उगता है, लेकिन हर सुबह इंसान वैसा नहीं होता जैसा कल था।

दिन का अनुभव, एक रात की सोच और कुछ अनकहे एहसास हमें थोड़ा सा बदल देते हैं। तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सिर्फ दिन गुजार रहे हैं या सच में जी भी रहे हैं? इन्हीं कुछ बातों के साथ शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की, जिसका नाम है कुछ बातें कुछ गीत, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका आपके साथ।

हम सब अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मंजिल की तलाश में हैं, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जब मंजिल मिल जाती है तो खुशी कुछ दिनों की होती है और फिर हम अगली मंजिल को ढूंढने लगते हैं। शायद इसलिए सुकून मंजिल में नहीं, सफ़र को महसूस करने में छिपा है। आज सुबह चाय पीते हुए, ऑफिस जाते हुए या घर का काम करते हुए बस एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, आपने आखिरी बार बिना किसी वजह के कब खुश हुए थे।

दोस्तों, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ दिनों के लिए आते हैं, लेकिन उनकी यादें सालों तक हमारे साथ रहती है। हर रिश्ता हमेशा साथ रहे ये ज़रूरी नहीं। कुछ रिश्ते हमें बस इतना सिखाने आते हैं कि प्यार, अपनापन और भरोसा कितना खूबसूरत होता है। कभी-कभी लोगों के चले जाने में हमें बहुत कुछ सीखा जाता है। वैसे एक बात तो है, जो लोग दिल में रहते हैं उन्हें हर रोज़ मिलने की ज़रूरत नहीं होती।

सुबह का वक्त शायद इसलिए सबसे खूबसूरत होता है क्योंकि इसमें शोर कम और उम्मीदें ज़्यादा होती है। दिन चढ़ने के साथ जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है, लेकिन सुबह के ये कुछ पल सिर्फ हमारे होते हैं। अगर आज कोई काम जो कि बहुत वक्त से नहीं हुआ है, उसे आज पूरा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सही समय अक्सर इंतज़ार करते करते निकल जाता है।

वेलकम बैक है जी आप सभी का प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत में, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निशिका। कभी आपने गौर किया है कि मोबाइल की बैटरी कम होते ही हम चार्जर ढूंढ लेते हैं, लेकिन जब मन थक जाता है तो उसे ऐसे ही चलाते रहते हैं। खुद को भी चार्ज करना बहुत ज़रूरी है, कभी परिवार के साथ बैठकर, कभी दोस्तों के साथ हंसकर, और कभी कुछ देर खुद के साथ रहकर, क्योंकि थका हुआ मन किसी भी खुशी का आनंद नहीं ले सकता।

दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा समय या पल होता है जिसे वो दोबारा जीना चाहता है। वक्त आगे बढ़ जाता है, लेकिन कुछ यादें वहीं ठहर जाती हैं। फिर एक दिन हम समझते हैं कि ज़िंदगी का मतलब अतीत को पकड़ कर रखना नहीं, बल्कि उससे सीख कर

दोस्तों, देखते ही हमारे साथ का ये 1 घंटा पूरा हो गया। उम्मीद है आपको मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगी आपकी रेडियो दोस्त निशिका। फिर मिलेगी ऐसी ही सुबह में आपसे। कुछ बातें कुछ गीत प्रोग्राम को देते हैं विराम। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुड़कुड़दास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
2: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवेटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान वहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।

0: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
1: उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
2: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
0: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
5: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमरीका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
6: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय

0: मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजीब बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन। फिर टूटी उद्धव की शिवसेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1 रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोकसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम निशित कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू अटेंड वीवा टेक समिट इन पेरिस विद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल माक्रों। पीएम मोदी टू ऑल्सो एड्रेस मेंबर्स ऑफ इंडियन कम्युनिटी इन फ्रेंच कैपिटल। President Draupadi Murmu to embark on a 5-day visit to Madhya Pradesh and Odisha beginning today. Polling for 2 Rajya Sabha seats from Jharkhand and 1 from Mizoram to take place today. India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement to come into force on the 15th of July this year. US President Donald Trump signs 14-point peace deal with Iran to end West Asia conflict. And in men's cricket, India beat Afghanistan by 170 runs in the second ODI of the 3-match series to take unassailable 2-0 lead. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi arrived in Paris last night for the final leg of his visit to France. Upon his arrival in the French capital, Mr. Modi received a warm welcome from the members of the Indian community gathered at his hotel.
3: I feel India and फ्रांस इट

सभी सुधीर श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार। जहां हम सुनते हैं कुछ मनपसंद गीत, नए नवेले, कुछ गीत होते हैं जो पुरानी मेलोडी से सजे होते हैं और मिठास से भरे होते हैं। यहाँ हम बात करते हैं जिंदगी की, यहाँ हम बात करते हैं इतिहास की, यहाँ हम बात करते हैं पर्यावरण की, और यहाँ मुलाकात होती है मेहमानों से। ये है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम। नमस्कार।

और इन सब के साथ होती है ढेर सारी बातें, जो हमारा मन करता है हम आपसे बात करते हैं, और हम बहुत सारे गीत भी सुनते हैं। और बातों की अगर बात ही चली है तो श्रोताओं, चेंज इज हार्ड एट फर्स्ट, मैसी इन द मिडल एंड गॉर्जियस एट द एंड। अब हम थोड़ा सा क्लू दिए हैं आपको कि आज हम किस बारे में बात करेंगे।

0: और इस क्लू से आपको सोचने का विषय देकर हम बादस्तूर आगे बढ़ते हैं अपने टीम परिचय की ओर।
1: डियर लिसनर्स, हाई पावर ट्रांसमीटर पर है नरेंद्र सिंह राठौड़ और फारूक अहमद शेख।
0: वहीं एफएम ट्रांसमीटर से हमारे साथ है सीएल सोनी।
1: प्रोग्राम को टेक्निकली कंट्रोल कर रहे हैं कंट्रोल रूम से इंजीनियर सुनील जयपाल। अनाउंसर ऑन ड्यूटी यानी कि कंसोल पर उंगलियां थिरकाते हुए आज म्यूजिकल ट्रैक हमें सुनाएंगी निशिका।
0: वहीं एफएम ट्रांसमिशन से हमारे साथ है उद्घोषक नेमी चंद। और दोस्तों, हमारे इस प्रोग्राम के प्रस्तुतकर्ता और संयोजन किया है राजेश लामरोड ने। और इन सभी के साथ मैं कविता पवार
1: और मैं न्यू नूतन सोनी।
0: जिंदगी के बदलाव की बातें करेंगे, आपके साथ जुड़े रहेंगे आधे घंटे तक नए नए गीतों के सफर में। पर फिलहाल आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

0: श्रोताओं, आज हम बात करेंगे बदलाव की। जैसा कि हम पहले म्यूजिकल ट्रैक से पहले बात कर रहे थे, चेंज यानी सबसे पहले हमें सिखाती है प्रकृति। प्रकृति का नियम है श्रोताओं कि परिवर्तन जो है हमारे लाइफ का बहुत ही एक ज़रूरी हिस्सा है, और इसी से हम जो है लाइफ इंटरेस्टिंग भी बनी रहती है। दिन के बाद रात आती है और मौसम भी बदलते रहते हैं, और हमारे चारों तरफ हम देखते हैं, ग्रीनरी देखते हैं, पेड़ देखते हैं, और पेड़ पर जो है नए नए पत्ते आते हैं, नई नई कलियाँ खिलती है, फूल खिलते हैं। और यदि प्रकृति में बदलाव न हो तो हमारा जो लाइफ है वो भी एकदम ऐसा लगेगा जैसे ठहर से गई है।
1: इन सारी बातों से एक बात साफ हो जाती है, और वो ये है कि समय के साथ लगातार आगे बढ़ते रहना ही जीवन है, जिंदगी है। और दोस्तों, प्रकृति में अगर ये बदलाव ना हो तो जिंदगी में रंग कहाँ से आएंगे? ये
0: बिल्कुल
1: जीवन एकदम नीरस और ठहरा हुआ हो जाएगा। और ठीक इसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी बदलाव का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है, और इसीलिए हम अपने प्रोग्राम में भी नित नए बदलाव करते हैं। कुछ देर हम नए गीतों के साथ चलते हैं और
0: बिल्कुल
1: फिर हम पुराने गीतों की ओर रुख करते हैं। तो लेकिन सेकंड ट्रैक नए नवेले गीतों में से, ये आपके लिए।

0: दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बदलाव की और जीवन में बदलाव की। उससे पहले हमने प्रकृति में बदलाव की बात की, और जीवन में अगर बदलाव की बात करें तो मनुष्य का जो व्यवहार होता है वो टोटली जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है, और वो परिस्थिति के अनुसार उसको ढलना भी पड़ता है।
1: बिल्कुल, ये परिस्थितियां ही तो हैं जो कभी जिंदगी में विनम्र बनाती है, कभी जिंदगी में विद्यार्थी बनाती है, कभी जिंदगी में शिक्षक बना देती है। परिस्थितियां सच में इंसान को उसके अनुरूप जीना सिखाती है, आगे बढ़ने की सीख देती है और खुद को बेहद बेहतर बनाकर प्रस्तुत करने का अवसर भी देती है।
0: बिल्कुल। और जो इंसान ना इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है, उसमें ढल जाता है, वो ही जीवन की जो चुनौतियाँ होती है उसको बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ उनके साथ डील कर पाता है। और जो बदलाव से डर जाता है वो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज से, संभावनाओं से खुद को दूर कर लेता है।
1: और ये जो आपने कहा ना कि जिंदगी की चुनौतियों में उनका सामना करने के लिए अपने आप को बदल देता है ना,
0: हाँ
1: उसको डील करने की एक आदत हो जाती है, इसे आत्मविश्वास कहते हैं। और ये
0: हाँ
1: परिस्थितियां जो है इंसान में आत्मविश्वास भरती है, और ये आत्मविश्वास है जो इंसान को जीत की ओर अग्रसर करता है।

0: इंसानों की भी एक अजीब रिवायत है, हम जिस भी परिस्थिति में जी रहे होते हैं बस उसमें सुकून तलाश लेते हैं और वो फिर ठीक भी लगने लगता है। और वहाँ अगर अचानक से परिस्थितियाँ बदल जाएं तो वो बड़ा असुविधाजनक हो जाता है और ऐसा लगता है कि ये बदलाव कहाँ से आ
1: हाँ, और
0: गया
1: ऐसा
0: और हम
1: लगता है कि
0: घबरा जाते
1: हमें
0: हैं।
1: इस कंफर्ट जोन से क्यों निकाला जा रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे नई नौकरी लग जाए, प्रमोशन हो
1: हाँ
0: जाए, नया शहर मिल जाए, नई जिम्मेदारियां आ जाए या जीवन में कुछ भी नया जुड़ जाए, तो हम
1: हाँ
0: एकदम से डावाडोल से हो जाते हैं और एकदम ऐसे लगने लगता है कि अल्लाह अच्छा खासा जीवन चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया, है ना।
1: हाँ पूरे जैसे हिल जाता है, और हमारा
0: हाँ
1: ऐसा लगता है कि पूरा व्यक्तित्व जो हमने एकदम कंफर्ट जोन में मजबूत कर रखा था खुद को, वो
0: हाँ
1: पूरा कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ा डिगमगाने लगता
0: जी
1: है।
0: जी
1: और देखा जाए तो आज का युग ही जो है बदलाव से भरा हुआ है, चाहे टेक्नोलॉजी हो,
0: जरूरी भी है। हाँ
1: हाँ, और चाहे संचार के माध्यम हो, हमारी शिक्षा प्रणाली देख लो, और हर हमारे हर काम के तरीकों को देख लो, उसमें भी बड़ा चेंज आ जाता है। और जो लोग इस चेंज को कदम से कदम मिलाकर स्वीकार करते हैं, वे ऐसा देखा जाता है कि बहुत सक्सेस होते हैं लाइफ में।
0: बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये परिवर्तन है, ये हमारे अनुभवों को और भी समृद्ध बनाते हैं, मजबूत बनाते हैं और एक मजबूत व्यक्तित्व भी हमें देते हैं, है ना। तो परिवर्तन समस्या नहीं है, एक अवसर है जो आपको बदलने का, आपके आत्मविश्वास को मजबूत करने का एक मौका बनकर आपके जीवन में आता है, उसे सहर्ष एक्सेप्ट करना चाहिए।

0: ये डर इंसान को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देता है। कहते हैं ना कि जो बदलता नहीं वो आगे बढ़ता नहीं। समय की धारा में जो बहना सीख जाता है वो हर बदलाव को अवसर बना देता है।
1: हाँ, और जिंदगी ठहराव नहीं श्रोताओं, निरंतर यात्रा का नाम है, और बदलाव उस यात्रा का सबसे सुंदर पड़ाव है।

0: श्रोताओं, 9 बजने वाले हैं। हम एक न्यूज ब्रेक के लिए रुकेंगे और फिर से लौटेंगे इस कार्यक्रम में 9:10 पर।
1: ये आकाशवाणी का जोधपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में प्रादेशिक समाचार जो आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल

0: इंटेलिजेंस के सुरक्षित समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एआई की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्ध को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24, 2024-25 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य

0: सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
1: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी DPR तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका सौहार्दपूर्ण तरीके से समाधान निकाला जा सके।
0: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: श्रोताओं, समाचार के बाद आपका फिर से स्वागत है मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम नमस्कार में, जिसमें हम ढेर सारी बातें करते हैं। और आज हमने बात की बदलाव की, प्रकृति में बदलाव की, जीवन में बदलाव की और कैसे जीवन परिस्थिति के अनुसार हमारा बदलता है और हम लोगों से व्यवहार करते हैं, और टेक्निक में जो है इस फील्ड में किस तरह से चेंजेस आ रहे हैं और वो भी कितने ज़रूरी है। इस तरह की तमाम हमने बातें की। और अब जो है निशिका इशारा कर रही है कि वो हमें एक म्यूज़िकल ट्रैक सुनाएंगी।

0: इन तरह के गीतों को सुनकर आपको भी लगता होगा ना दोस्तों कि संगीत सिर्फ सुर नहीं, ये साधना है। कला सिर्फ रंग नहीं, शब्दों का जामा नहीं, ये साधकों की आत्मा की आवाज है। और इन साधकों की साधना को समर्पित सम्मान संगीत और संवाद में संगम के सेतु का जोधपुर में एक मंच सजाया है डॉक्टर स्वाति शर्मा ने। स्वाति शर्मा जो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक सोच है उन कलाकारों से जुड़ी जिनके बिना मंच हमेशा ही अधूरा है। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर स्वाति शर्मा से, पूर्व अध्यक्ष संगीत विभाग जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से। हेलो।
1: हाँ जी नमस्कार।
0: नमस्कार स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस प्रोग्राम में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: और ये स्वाति शर्मा, डॉक्टर स्वाति शर्मा सिर्फ एक नाम तो नहीं है, ये अलग अलग किरदारों का एक संगम है। तो जरा अपने बारे में हमारे सुधि श्रोताओं को कुछ बताएं प्लीज।
1: सबसे पहले तो मैं सभी जो भी सुधि श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनको सबको ही सादर वंदन प्रणाम और नमस्कार करती हूँ। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा हूँ, मेरा जन्म जोधपुर में ही हुआ था और मैंने यहीं से अपनी संगीत की भी और बाकी शिक्षा दीक्षा ली है और संगीत के प्रति बचपन से ही जुड़ाव रहा तो उसी के लिए तैयारी करती रही और इसी साधना में आगे बढ़ते बढ़ते मैंने पीएचडी कंप्लीट की। मैं एमए गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ और पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में मैंने कई सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, संगीत के विषय में बहुत सारी किताबें लिखी हैं जिनमें से 6 किताबें मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। उनमें से संगीत चिकित्सा भी है और तार वाद्यों की उत्पत्ति विकास भी है, संगीत मंजरी भी है और अभी मैंने 1.5 साल पहले एक पुस्तक लिखी है जो संगीत के जो शोध विद्यार्थी होते हैं नेट जीआरएफ की तैयारी के लिए, तो उनके लिए मैंने लिखी है संगीत में सफलता के सोपान। तो उसका जो है विमोचन केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा किया गया और मेरे कम से कम 35 से ज्यादा शोध पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हैं जो इंटरनेशनल और नेशनल जर्नल्स में आर्टिकल पब्लिश है मेरे।

0: बहुत
1: बस
0: सुंदर।
1: यही छोटा सा मेरा
0: और वर्तमान में
1: बिजनेस
0: आप?
1: है। मैं अभी संगीत में, संगीत विभाग जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हूँ।
0: जी, बहुत ही सुंदर। मतलब ये कह दिया जाए कि आपका जीवन संगीत को समर्पित है, तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये संगीत विभाग में जो आप सेवाएं दे रहे हैं, उसके अलावा आपने इतने सारे शोध पत्र लिखे हैं, और ये जो भी आपने किया है उसके अलावा भी आप कुछ करते हैं जिससे
1: हाँ जी,
0: संगीत और
1: मैंने,
0: संगीत
1: हाँ
0: की आत्मा अमर रहे।
1: जी हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने उसी के लिए एक जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में संगीत विभाग के अध्यक्ष का दायित्व संभालना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और गौरव की बात होती है।
0: जी,
1: जब इस
0: निश्चित रूप
1: प्रतिष्ठित
0: से।
1: पद पर बैठने का अवसर मिला तो मन में ये संकल्प और विचार आना स्वाभाविक था कि राजस्थान की समृद्ध लोक कला और संस्कृति को एक नई पहचान और उसको वैश्विक स्तर पर मंच कैसे प्रदान किया जाए।
0: वाह,
1: तो हम ये सब जानते हैं कि राजस्थान की माटी में कण कण में ही संगीत रचा बसा है। यहाँ के लोक गीतों में, मांड गायकी में और पारंपरिक वाद्यों में जो मिठास और गहराई है, उसे एकेडमिक स्टेज पर और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता हमेशा से ही महसूस होती रही।
0: और इसके लिए
1: तो
0: कोई एक अकेला काफी नहीं होता।
1: अकेला काफी नहीं होता, तो संगीत विभाग के अध्यक्ष के रूप में मन में ये योजनाएं और विचार तो आकार लेते ही रहे। इसी कारण से मैंने 2024 में एक एनजीओ स्टैब्लिश किया, मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान। इसका
0: वाह,
1: गठन किया और गठन के पीछे कुछ सखी सहेलियों और कला प्रेमियों के साथ में बैठकर और संगीत के गुरुओं के साथ में विचार विमर्श करने के बाद में और बहुत सारा अध्ययन करने के बाद में ये कारवां शुरू हुआ। और जोधपुर स्थापना दिवस यानी 12 मई की पूर्व संध्या को हमने, 11 मई को हमने 2024 में शपथ ग्रहण का आयोजन कर इस कारवां की शुरुआत की।
0: बहुत सुंदर।
1: और
0: इसकी प्रेरणा
1: हमने
0: कहाँ से मिली?
1: शुरू से ही ये विचार किया था कि इसमें, आपको बताऊं मैं, कि सिर्फ महिलाओं का ही हम संगठन रखेंगे, ऐसा हमने सोचा था। और हमारी 100 महिलाओं का संगठन है और इस संगठन में हर एक समाज और तबके से महिलाएं आती हैं। कुछ सरकारी अफसर हैं, कुछ गृहिणियां हैं, कुछ कला पारखी हैं, कुछ वकील भी हैं, कोई
0: वाह,
1: प्रोफेसर भी हैं। ऐसा करके हमने 100 महिलाओं का ये संगठन किया,
0: बहुत सुंदर। वैसे
1: तैयार
0: ये
1: किया।
0: आसान नहीं रहा होगा, है
1: नहीं,
0: ना?
1: आसान तो कोई चीज नहीं
0: जी
1: होती
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी
0: अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो संस्था आपने शुरू की, ये जो एनजीओ आप
1: जी
0: चला रहे हैं, मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान,
1: हाँ जी,
0: इसका खास उद्देश्य क्या है?
1: कविता जी, इसका उद्देश्य है कि लोक संगीत के संरक्षण का मेन उद्देश्य है। जैसे राजस्थान के दूर दराज के गांवों में फैली जो पारंपरिक कलाएं हैं, जो गीत हैं, उनको दस्तावेज के रूप में सहेजना ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। एकेडमिक और व्यवहारिक तालमेल भी बनाए रखना जिससे विश्वविद्यालय के छात्रों को संगीत की, शास्त्रीय संगीत की बारीकियों के साथ साथ राजस्थान की स्थानीय लोक संगीत जैसे मंगनियार, लंगा कलाकार और कालबेलिया परंपराओं के अनूठे स्वरूपों से रूबरू करवाना। और सबसे मुख्य जो उद्देश्य है इसका, जैसे लुप्त होते वाद्य हैं जैसे कमायचा, रावण हत्ता, सारंगी, भपंग, अलगोजा, और जो
0: मोरचंग,
1: नृत्य
0: हाँ।
1: है जो आजकल देखने में भी नहीं मिलते, जैसे कच्ची घोड़ी नृत्य है, कालबेलिया, भवाई नृत्य, कठपुतली, और गायकी में भी जो भी पारंपरिक लोकगीत है उसको आजकल कहीं सुनने में भी नहीं मिलते, और वो गीत जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं हमारे घरों में गाती थीं। तो हमारी संस्था का ये उद्देश्य है कि उन आर्ट फॉर्म्स को संभाल कर रखना, सहेजना और उन्हें संरक्षण देना।
0: जी, बहुत ही सुंदर काम है, बहुत ही नेक काम है, और इसके पीछे की भावना भी बड़ी शुद्ध है। तो
1: जी
0: सम्मान संगीत और संवाद के संगम का सेतु, ये जो
1: जी
0: आयोजन होने जा रहा है,
1: हाँ
0: इसके
1: जी
0: विषय में थोड़ा बताएं, और ये अवार्ड्स क्या होते हैं, इनके लिए कलाकारों का चयन कैसे होता है?
1: तो मरुधरा गौरव सम्मान के विषय में यदि मैं बताऊं तो राजस्थानी लोक कला और संगीत के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों में अपना भूमिका निभाते हुए संस्था द्वारा ये निर्णय लिया गया कि प्रत्येक वर्ष विश्व संगीत दिवस की पूर्व संध्या यानी 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी होता है और
0: बिल्कुल।
1: योगा डे भी होता है, तो उसकी पूर्व संध्या यानी 20
0: 20
1: जून
0: तारीख
1: को उन 11 प्रतिभावान कलाकारों को चिन्हित करके उनको सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने लोक कला को जीवित रखने में अपना विशेष योगदान दिया है।
0: ये हर साल
1: और
0: 11 होते हैं।
1: हाँ जी, हर वर्ष 11 होते हैं और मरुधरा लोक कला और संगीत सेवा संस्थान द्वारा पिछले 2 वर्ष

0: वर्षों में आप विश्वास नहीं करेंगे, अल्लाह जुलाई बाई जो 1942 में जन्मी थी और मांड गायकी को उस
1: बिल्कुल
0: जमाने में जहाँ गाना बजाने को बिल्कुल हेय दृष्टि से देखा जाता था एक महिला के लिए,
1: बिल्कुल
0: उस समय में अल्लाह जुलाई बाई ने इंटरनेशनल लेवल पर मांड गायकी को
1: एस्टेब्लिश
0: अपनी
1: किया, बिल्कुल
0: राजस्थान को पहचान दिलाई। इसके अलावा हमने जिन जिन को अभी अवार्ड दिए हैं उनमें माली छवरलाल गहलोत जी, कृष्णा छंगाणी जी, गौरी देवी जी, कालूराम प्रजापत जी, कुशल भारत जी, फतेह कुमारी व्यास जी, नारायण सिंह माणकलाव जी, अनवर अली खान जो पद्मश्री हैं,
1: जी
0: नारायण सिंह
1: जी
0: जी भी जिन्होंने नशा मुक्ति का एक कम से कम कई लाख लोगों को अफीम की लत छुड़वाई है,
1: जी
0: मोइनुद्दीन खान साहब जो खुद पद्मश्री हैं, श्री काफ निजाम जी जो हमारे शहर की जानी मानी हस्ती है और अभी उनको
1: बेशक
0: पद्मश्री मिला है,
1: जी
0: शैलेश लोढ़ा जी, इला अरुण जी, बसंत काबरा जी, राजेंद्र जी वैष्णव, केसी मालू जो बीना कैसेट के डायरेक्टर हैं, गुलाबो सपेरा जी, सीमा राठौर सहित अनेक अनेक अनेक प्रतिष्ठित कलाकारों और साहित्यकारों को ये सम्मान दिया जा चुका है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इसी वर्ष 2026 में स्वर्गीय सज्जन पुरोहित जी जो बॉलीवुड अभिनेता रहे हैं,
1: हाँ
0: विक्रम और
1: जी
0: बेताल में बेताल की भूमिका भी निभा चुके हैं,
1: जी हाँ
0: उनसे आप पहचान जाएंगे। और
1: बिल्कुल
0: इसके अलावा पद्मश्री लाखा खान जी हैं सारंगी वादन में, पूरा राम शर्मा जी है शास्त्रीय गायन में, अनुराधा अडवाणी जी हैं कला मर्मज्ञ हैं वो और समाज सेविका भी हैं,
1: बेशक
0: विदुषी पुलमा दास जोशी जी, साबिर हुसैन खान जी, उस्ताद नियाज अहमद खान, डॉक्टर रोशन भारती जी गजल गायकी में, डॉक्टर मंजूषा चंद्र भूषण सक्सेना जी हैं भरतनाट्यम में, और लक्ष्यपाल सिंह राठौड़ है वरिष्ठ चित्रकार हैं जो 40 वर्षों से अधिक
1: जी
0: से
1: जी
0: अपनी चित्रकारिता में फेमस हैं,
1: हाँ
0: और
1: जी
0: फेनू सपेरा जी जो कालबेलिया नृत्य को ये अपने इंटरनेशनल लेवल पे लेके गई हैं, इनको सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है।
1: स्वाति जी, हम इस सोच को सलाम करते हैं। सच में
0: थैंक यू
1: ये
0: सो
1: बेहद
0: मच।
1: ही खूबसूरत कदम है, और कहते हैं ना कि इसके लिए अकेला ही दम भरना पड़ता होता है, कारवां तो फिर बनता चला जाता है। तो कला संगीत और कलाकारों के संवाद के सेतु में आम जन से कोई अपेक्षा या उनके लिए कोई संदेश?
0: बिल्कुल, मैं सभी लोगों से जो भी हमारा सुन रहे हैं ये पॉडकास्ट, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आपके घर में भी अगर कोई ऐसा बच्चा है या कोई ऐसी महिला है या कोई ऐसा पुरुष है, कोई भी है जो उसमें थोड़ी बहुत भी कला है, तो उसको कला को पहचाने, उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करें, क्योंकि कहते हैं कि माँ सरस्वती की कृपा होती है उन्हीं को कला मिलती है, ये तो हम सभी जानते हैं, तो
1: बेशक
0: उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और हम लोग मंच भी प्रदान करते हैं, आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं, यदि आप में कला है और आप लोगों को मंच नहीं मिल रहा है तो हमारी संस्था आपको मंच भी प्रदान करेगी।
1: वाह, ये तो
0: और
1: बहुत ही अच्छी
0: सबसे अच्छी
1: बात है।
0: बात है कि हमारा हमारी जो संस्था है उसके संरक्षक के रूप में पूर्व महाराजा श्री गजेंद्र सिंह जी और महारानी हेमलता राजे भी समय समय वो हमारे संरक्षक हैं और समय निकाल कर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा हमारा मंच है, आप लोग हमसे जुड़िए।
1: तो डॉक्टर
0: और
1: स्वाति शर्मा जी, चलते
0: जी
1: चलते एक सवाल और जो हमारे
0: जी
1: जहन में है कि आप क्लासिकल संगीत से जुड़ी हैं, है ना,
0: हाँ जी
1: और इन
0: हाँ
1: दिनों का संगीत जो है वो एक अलग परिभाषा को लिए है ना। शास्त्रीय संगीत तो
0: हाँ जी
1: कहता
0: हाँ
1: है
0: जी
1: कि उत्तम गाना मध्यम बजाना, है ना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: लेकिन आज का संगीत ये नहीं कहता। आज के संगीत में शोर थोड़ा ज्यादा है और आवाज कहीं ना कहीं दब जाती है, शब्दों के मायने बदल गए हैं। ऐसे में आपके मन में संगीत के प्रति क्या विचार आता है इस संगीत को
0: ये तो
1: लेकर?
0: बड़ा ही अच्छा आपने सवाल पूछा है। वाकई में संगीत की दुर्दशा जहाँ होती है, तो एक कलाकार और एक शास्त्रीय गायिका होने के नाते मुझे बड़ा दुख लगता है और बड़ा खेद लगता है कि कहाँ, जो हम बॉलीवुड अगर की बात करें तो पुराने जमाने में लता जी, आशा मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, उषा मंगेशकर जी, जो ये तीनों बहनें, इन्होंने जो कमांड संभाल रखी थी और उस टाइम की जो लिरिक्स और जो संगीत होता था वो कहीं ना कहीं शास्त्रीय धुनों पर बेस होता था। ऐसा नहीं है कि आजकल सारा ही संगीत गलत हो रहा है, लेकिन जो हिप हॉप और जो ये फास्ट म्यूजिक का जो दौर चला है, तो उससे हम लोगों के सामने हम क्या गंदगी परोस रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी भ्रमित हो रही है, हमारी जड़ों से टूट रही है,
1: जी
0: हमारी जो नींव है, जो हमारा मधुर संगीत है, उससे वंचित हो रही है, तो
1: बिल्कुल
0: ये बड़ी दुर्दशा लगती है। और इसके लिए बिल्कुल प्रयास करने चाहिए, बहुत लोगों को मिलके इसको प्रयास करने की और अपने संगीत की प्योरिटी को बचाने की
1: बिल्कुल,
0: आवश्यकता है।
1: संगीत सुकून का जरिया है
0: बिल्कुल
1: ना, और ये बने रहना चाहिए। तो डॉक्टर स्वाति शर्मा जी, आपसे बात करके बेहद ही

0: अच्छा लगा। और ये हमारे प्रोग्राम का दस्तूर है कि हम चलते चलते आपसे अपनी पसंद का एक कोई गाना पूछें और फिर हम और आप मिलकर उस गीत को सुनें।
1: बिल्कुल, तो मेरी पसंद का गाना है लग जा गले, लता मंगेशकर जी द्वारा।
0: क्या
1: गाया
0: बात
1: गया।
0: है, ये तो मुझे लगता है
1: हाँ
0: सभी की पसंद होगा, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल।
0: तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने हमारा ये आमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद।
1: मुझे भी यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत
0: और
1: धन्यवाद।
0: 20 जून का दिन जो अनसुने सुर, अनकहे संघर्ष और अनमोल साधना को सलाम करने का दिन है, उसके लिए
1: जी
0: हम
1: जी
0: आपको अग्रिम शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और
1: थैंक यू
0: सुनवाते हैं
1: सो मच,
0: आपको ये
1: बहुत बहुत
0: गाना।
1: धन्यवाद जी।
0: धन्यवाद।

0: डियर लिसनर्स, अभी थी छुट्टियां और छुट्टियों में सभी लोग सोच रहे हैं कि अभी चल भी रही है छुट्टियां, एक्चुअली थी नहीं, अभी भी चल रही है। तो सब लोग यही सोचते हैं कि कहाँ जाना है घूमने के लिए, कौन सी जगह सेलेक्ट करें। और एक ऑप्शन जो सबके माइंड में आता है, और स्पेशली राजस्थानियों के माइंड में तो आता ही है, कि कहाँ जाना है कि साहब, गोवा चलते हैं।
1: तो अगर आज आप गोवा में हैं
0: हाँ
1: तो आज का दिन तो बहुत ही उत्तम होने वाला है, क्योंकि आज है गोवा क्रांति दिवस।
0: बिल्कुल,
1: आज 18 जून है और भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, पर भारत का एक हिस्सा 14 साल और गुलाम रहा और वो हिस्सा था गोवा। और आज है गोवा क्रांति दिवस। 450 साल की पुर्तगाली गुलामी के खिलाफ पहली चिंगारी जलाई थी आज ही के दिन 1946 में। दक्षिण गोवा का मडगांव, जिसे मारगांव भी कहते हैं, उस समय शाम का 4:15 हुआ था जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और गोवा के क्रांतिकारी डॉक्टर जूलियो मेनेसेस ने एक घोड़ा गाड़ी

0: में बैठकर मडगांव चौक तक ही पहुंचे थे और हजारों लोग वहां जमा थे, जो पुर्तगालियों ने सार्वजनिक सभाओं पर उस समय रोक लगा दी थी। पर फिर भी डॉक्टर लोहिया का ये कहना था कि आवाज उठाना अगर अपराध है तो मैं अपराधी बनूंगा, क्योंकि मुझे गोवा आजाद चाहिए।
1: बिल्कुल। और डॉक्टर लोहिया ने जो है अपने जोशीले भाषण के जरिए गोवा के लोगों को पुर्तगालियों की जो दमनकारी नीति थी ना दोस्तों, उसके खिलाफ जो है आवाज उठाने और अपने नागरिक अधिकारों के लिए एक अहिंसक संघर्ष शुरू करने के लिए उन्हें प्रेरित किया था।
0: और ये सिर्फ भाषण नहीं था दोस्तों, ये गोवा मुक्ति संग्राम का पहला सत्याग्रह था और इसे ही इतिहास में गोवा क्रांति दिवस कहते हैं। इसमें अगले दिन जो है जुलूस निकला, लोग सड़कों पर बैठे, नारे लगाए और कुछ भी हुआ, लेकिन 15 साल तक ये संघर्ष चला और आखिर में गोवा आजाद हो ही गया ऑपरेशन विजय के जरिए।
1: बिल्कुल। और इस दिन जो है मनाने के लिए गोवा सरकार, स्वतंत्रता सेनानियों और नागरिकों द्वारा राज्य भर में विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम होते हैं और रैलियों का आयोजन किया जाता है, और इस समारोह के माध्यम से जो अमीर शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित की जाती है।
0: और इसी दिन डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि गोवा के लोग खुद अपनी मुक्ति की लड़ाई लड़ेंगे और भारत उनका साथ देगा। हुआ भी यही। आज गोवा सरकार हर साल 18 जून यानी आज के दिन गोवा क्रांति दिवस मनाती है, शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं, युवाओं को उस संघर्ष की याद दिलाई जाती है। और कवि मनोहर राय सरदेसाई ने इसके बारे में एक बात भी लिखी है जो हम आपको बताते हैं कि उदक ले गीत जाले, रंगत आनी रंगत जाले होन, भावा तुका याद आसठ 18 जून। मतलब पानी में मिले खून और खून में मिला पानी। भाई क्या तुम्हें 18 जून याद है? 18 जून ये वो दिन है जब गोवा ने तय किया कि हम आजाद की सांस लेंगे।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

तो 18 जून की बात चली ही है नूतन, तो 18 जून का इतिहास भी टटोलते देखते हैं आज की तारीख में क्या दर्ज है इतिहास के पन्नों में।

0: तो बात करते हैं 1576 की। आज ही के दिन मेवाड़ के महान शासक महाराणा प्रताप और मुगल बादशाह अकबर के बीच ऐतिहासिक हल्दीघाटी का युद्ध शुरू हुआ था।
1: और श्रोताओं, 1858 को यानी कि 18 जून 1858 को 1857 की क्रांति की नायिका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने ग्वालियर में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी।
0: और अब बात करते हैं 1979 की। तो आज ही के दिन अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत राष्ट्रपति ब्रेजनेव द्वारा साल्ट द्वितीय समझौते पर वियना में हस्ताक्षर किए गए थे।
1: अब बात करते हैं 18 जून 1999 की। तो इसी दिन 35 यूरोपीय देशों के बीच लंदन में पेयजल समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी दिन लातविया में वाइके फ्रेब्रेमा को देश का नया राष्ट्रपति चुना गया था।

0: हस्ताक्षर हुए थे।
1: और एक और महत्वपूर्ण घटना, वियतनाम ने विश्व बाजार में आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिए चावल के निर्यात पर लगी हुई पाबंदी को आज ही के दिन हटाया था।

इतिहास में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और बात करते हैं 2008 की। केंद्र सरकार ने गुर्जरों को ओबीसी कोटे में 5% आरक्षण देने की घोषणा की थी इसी दिन। और एक और महत्वपूर्ण घटना घटित हुई थी, एक और महत्वपूर्ण समझौता हुआ श्रोताओं। भारत यात्रा पर आए सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के मध्य 3 समझौतों पर हस्त

0: तो दोस्तों, आज है गुरुवार और
1: हम्म,
0: गुरुवार का सेगमेंट जुड़ा होता है हमारे पर्यावरण से। और आज का विषय है लानीना।
1: ये जो सुनने में बड़ा ही क्यूट सा आपको लग रहा है ना, ला नीना, इसका मीनिंग भी बड़ा क्यूट सा होता है। दोस्तों, प्रशांत महासागर में होने वाली एक जलवायु घटना है ये, जिसका अर्थ होता है, जैसा कि हमने बताया, बड़ा ही क्यूट अर्थ है, छोटी बच्ची।
0: और इस लानीना के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर की समुद्री

0: सतह का तापमान जो है वो सामान्य से काफी कम हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और ये घटना अल नीनो के बिल्कुल विपरीत अवस्था है। ला नीना कैसे काम करता है? सामान्य परिस्थितियों की तुलना में ला नीना के समय पूर्व से पश्चिम की ओर चलने वाली व्यापारिक जो हवाएं हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाती है, और इसके कारण प्रशांत महासागर का गर्म पानी जो है पश्चिम की ओर खिसकने लगता है, और इसकी जगह पर दक्षिण अमेरिकी तट के पास समुद्र की गहराई से ठंडा पानी ऊपर की ओर उठने लगता है।
1: यानी कि ये हमारे मौसम को ठंडा करता है, और भारत पर तो इसका प्रभाव जो है बड़ा ही पॉजिटिव पड़ता है। इससे जो मानसून है वो बेहतर हो जाता है। इसके प्रभाव से भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान अच्छी और सामान्य से अधिक बारिश होने लगती
0: यानी
1: है।
0: सकारात्मक प्रभाव रहता
1: हाँ, और
0: है।
1: जब बारिश होगी तो ऑब्वियसली हमारी जो कृषि है उसको तो बड़ा ही फायदा होता है।
0: बिल्कुल, अच्छी बारिश होने से देश भर में कृषि उत्पादन और जल संसाधनों को भी बढ़ावा मिलता है, और सर्दियों के मौसम में ला नीना के कारण उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में, विशेषकर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में सामान्य से ज्यादा कड़ाके की ठंड और शीतलहर की स्थिति भी बन सकती है।
1: ये तो बात हुई भारत की, और बात करें इसके वैश्विक प्रभाव की तो दुनिया के अन्य हिस्सों में ला नीना अलग-अलग तरीके से मौसम को प्रभावित करता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया में भारी बारिश और कहीं ना कहीं एक तरह से बाढ़ का खतरा भी बढ़ जाता है वहां
0: जब
1: पे।
0: हम अल नीनो और ला नीना को सुनते हैं तो मन में एक प्रश्न आता है कि ये दोनों सुनने में बिल्कुल एक से हैं, लेकिन अलग-अलग कैसे हैं?
1: हाँ बिल्कुल, इनका जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है श्रोताओं। ला नीना को एंसो चक्र की शीत अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसका प्रभाव ठंडा होता है, और इसके बिल्कुल विपरीत अल नीनो इसकी उष्ण अवस्था है, यानी कि इसका प्रभाव गर्म पड़ता है। पूर्वी प्रशांत महासागर का तापमान जो है बढ़ जाता है, और भारत में कम बारिश यानी कि सूखा होने की संभावना रहती है।
0: ऐसा हम चाहते कतई नहीं,
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारा पर्यावरण या हमारी धरती की जो तस्वीर है उसे हम हमेशा हरा भरा और अपने हित की रंगों में रंगे हुए देखना चाहते हैं, और इसी कामना से आगे बढ़ते हैं।

श्रोताओं, आज जन्मदिन है होमी मोतीलावाला का, जो नौकायन में एक भारतीय खिलाड़ी हैं और उन्हें वर्ष 1993 में नौकायन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला था। और इन्हें 1994 से 95 में पीके गर्ग के साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद कोचिंग उत्कृष्टता के लिए साल 2002 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आज इनके जन्मदिन पर हम इन्हें ढेरों शुभकामनाएं देते हैं।

0: इसी कड़ी में हम याद करते हैं कि सुदर्शन जी को भी, ये एक सरल और गहन व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। परम पूज्य कुप्पली सीता रामैया सुदर्शन जी इनका पूरा नाम है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5वें सर संघ संचालक के रूप में 9 वर्षों तक आपने नेतृत्व किया, और उसके बाद में स्वयं स्वस्थ रहते हुए मोहन भागवत को अपना उत्तराधिकारी भी नामित किया।
1: इसी के साथ आज हम याद कर रहे हैं शंकर त्र्यंबक धर्माधिकारी जी को, जो भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी, गांधीवादी चिंतक के साथ साथ प्रसिद्ध लेखक भी थे। वे दादा धर्माधिकारी के नाम से जाने जाते हैं।

0: और अब याद करते हैं उन्हें जिन्होंने अपने काम से इतिहास के पन्नों में अपने नाम को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया। भारत के एक ऐसे प्रसिद्ध धारक धावक जिन्हें लोग फ्लाइंग सिख कहते हैं, यानी मिल्खा सिंह। इनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ और इनके अंदर दौड़ने को लेकर एक जुनून बचपन से ही था और स्कूल से घर और घर से स्कूल 10 किलोमीटर ही दौड़ कर जाया करते थे। और उसके बाद 9वीं पास करने के बाद वे मैकेनिकल व्यवसाय में जुड़ गए और 1953 में वे सेना में भर्ती हो गए और यहाँ उन्होंने दौड़ कूद पर विशेष ध्यान दिया।
1: और इसी के साथ 400 मीटर की दौड़ की तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी और सन 1956 में मेलबर्न में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने पहली बार 200 मीटर और 400 मीटर की रेस में भाग लिया था।
0: और गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया था और 1958 में इंग्लैंड के कार्डिफ में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स में मिल्खा सिंह ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल अपने नाम किया और उस समय आज़ाद भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने वाले ये पहले भारतीय थे।
1: बिल्कुल। और 1958 की बात करें तो 1958 के एशियाई खेलों में 200 मीटर और 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते इन्होंने और 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता और 1958 की बात करें तो इसमें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता।
0: तो और इन सारे पदकों के साथ इन्हें 1959 में पद्मश्री से अलंकृत किया गया और 18 जून 2021 को, माफ कीजिएगा, कोविड ने ये शानदार खिलाड़ी जो था उनको हमसे हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया और इन्होंने आज ही के दिन अपनी अनंत की यात्रा की ओर प्रस्थान किया।

नहीं रहना दूजा बनके, यही सोच रही उस्ताद अली अकबर खान साहब की। उन्होंने सरोद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई और इन्हें सरोद के जादूगर के रूप

0: में भी जाना जाता है।
1: और श्रोताओं, पुरस्कार भी कम नहीं मिले। पद्म भूषण 1971 में, पद्म विभूषण 1989 में, मैक आर्थर फेलोशिप, नेशनल हेरिटेज फेलोशिप भी मिली, पर उनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनका सरोद, जिसकी तारों से वो राग मारवा, राग यमन, राग भैरवी ऐसे बजाते थे कि लगता था समय रुक गया है, थम सा गया है। 18 जून 2009 को कैलिफोर्निया में 87 की एज में उनका निधन हुआ, पर सरोद की वो तान आज भी गूंज रही है जो अली अकबर साहब की 70 वर्षों की साधना है।
0: और इसी के साथ बढ़ते हैं समापन गीत की ओर।

0: निशिका का कहना है समय और सोच तो यही चाहता है, लेकिन समय इजाजत नहीं देता। तो आज का नमस्कार का ये अंक बस यहीं तक। कविता
1: और नूतन सोनी को
0: दीजिए
1: दीजिए इजाजत।
0: अनुमति।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं लोक संगीत।

जगदीश ढोली की आवाज में अभी आपने सुना ये लोक संगीत। अगला लोक संगीत सुनिए कविता शर्मा की आवाज में।

अभी आप सुन रहे थे लोक संगीत, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्यनगरी चैनल है। आइए सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत का पहला गीत सुनिए गुरु रंधावा की आवाज में।

पंकज उदास के गए इस गैर फिल्मी नगमे के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज़ पर।

श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत कार्यक्रम का सबसे पहला गीत लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन, फिल्म का नाम मिलन।

श्रोताओं, अभी आपने सुना मोहम्मद रफ़ी को। शकील बदायूं के बोल थे और नौशाद की तर्ज थी। फिल्म का नाम था पालकी। आइए फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं दुनिया फिल्म में किशोर कुमार और आशा भोंसले को।

आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर का गाया ये गीत। शैलेंद्र के बोल हैं और एस डी बर्मन की धुन है। फिल्म का नाम गाइड।

0: हर घर की वाणी आकाशवाणी, हर दिल की वाणी आकाशवाणी, और दिलों को जोड़ने के लिए हम आ रहे हैं बस एक क्लिक पर। हमारे स्टेशन्स लाइव, मन की बात, संगीत, ड्रामा, स्पोर्ट्स, पल पल की भरोसेमंद खबर, हमारे वेबसाइट akashvani.gov.in पर। नया भारत, नया आकाशवाणी।
1: आप भी अपने उत्पाद का विज्ञापन आकाशवाणी पर कीजिए और अपने व्यापार को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचाइए। अधिक जानकारी के लिए नजदीक के आकाशवाणी केंद्र से संपर्क करें या हमें मेल कीजिए salesairjc@gmail.com यानी salesairjc@gmail.com पर। हमारे चैनल हमेशा तत्पर, हमेशा सुरीले सफर पर।
2: अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम फिल्म संगीत में। आइए श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में ये गीत। आनंद बख्शी के बोल हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन है, फिल्म का नाम फर्ज।

0: मुझको नहीं कहना था, छुप के नजर से भी तू दिल से नहीं जाता।
1: अरे प्यार हुआ है जब से।

0: अभी आपने मुकेश और शारदा को सुना, हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन की तर्ज थी। फिल्म का नाम था अराउंड द वर्ल्ड। और आइए श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी सुमान कल्याणपुर का गाया ये नगमा। हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन की तर्ज है, फिल्म का नाम छोटी सी मुलाकात।
1: तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

0: आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में ये गाना। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज। फिल्म का नाम प्यार किए जा।
1: अरे हाँ, अरे अरे हाँ।

0: प्यार की ये
1: और श्रोताओं, यह है फिल्म संगीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। मोहम्मद रफी की आवाज़, तकदीर फिल्म का नाम है और आनंद बख्शी और कल्याण जी आनंद जी की टीम।

श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल, मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलोहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत। लोक संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको विविध कलाकारों की गाई कुछ चुनिंदा लोक रचनाएं सुनवा रहे हैं। आइए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं समूह देवी कलावंत की गाई इस लोक रचना के साथ।

अभी आपने सुना बनारसी लाल झोरी को, और आइए लोक संगीत कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको सुनवाते हैं नजरे खां की गाई ये लोक रचना।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

अल्लाह जिलाई बाई की गाई इस लोक रचना के साथ ही लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत। सुगम संगीत प्रोग्राम में सामीन सबसे पहली पेशकश मिताली सिंह की आवाज में ये गजल, कलाम यास्मीन जयपुरी का है।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: कमर्शियल ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है सुगम संगीत प्रोग्राम में। सामीन, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपको सुनवाते हैं तस्लीम फाजली का यह कलाम, आवाज मेहदी हसन की है।

0: सामीन हरिहरन की गाई इस गज़ल के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर। दिन के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया प्रादेशिक समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को पीएम जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेरबदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ERP प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद OPD के साथ साथ डे केयर, फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेंटल जैसी बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को खाद्य पदार्थों की रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल खाद्य योग्य और जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का उपयोग करने का निर्णय किया है। खाद्य नियामक ने बताया कि कुछ खाद्य व्यवसायों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान

0: जंग लगे टूटे हुए चाकू या किसी अन्य प्रकार के अनुपयुक्त काटने के उपकरणों का उपयोग करते हुए पाया गया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल। श्रोताओं, 1:05 हुए हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत। कृषि जगत कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं डॉक्टर भगवत सिंह राठौड़, जो कि प्रधान वैज्ञानिक और अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र काजरी जोधपुर में। उनसे बातचीत करेंगे दिनेश राणेजा। बातचीत का विषय रहेगा मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन।

0: कृषि जगत प्रोग्राम सुन वाला सगला किसान भाइया ने दिनेश राणे जरा घने मानसु राम राम और नमस्कार सा। किसान भाइया खेती बाड़ी रा काम काज है आप करा हा। खेत बचाओ अभियान रे तहत आज आप जानकारी लेवा मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन। आज अपने साथे है डॉक्टर भगवत सिंह राठौड़, आप प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष है काजरी कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर। राम राम सा।
1: राम राम सा। राम राम।
0: बहुत बहुत आभार आप कार्यक्रम में पधारिया।
1: आपको भी बहुत बहुत आभार। सभी किसान भाइयों और बहनों को मारो सादर नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब खेत बचाओ अभियान चल रही है तो कितनी तारीख तक चले लाओ?
1: ओ आपने 1 जून 30 जून तक चले लो। ओ खेत बचाओ अभियान अपना देश का कृषि मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब का मार्गदर्शन के अंदर देश की सभी ICR की संस्था, पूरे देश के कृषि विभाग और कृषि यूनिवर्सिटियां, कृषि छात्र सभी मिलकर गांव-गांव में जाकर किसानों को ये बता रहे हैं कि आप अपनी स्वस्थ मिट्टी है इसको बचाओ, इसको स्वस्थ रखो।
0: डॉक्टर साहब आज खेत बचाओ अभियान रे अंतर्गत आप मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन रे बारे में जानकारी दिला रहे हो। खास तौर से खेत बचाओ जी को अभियान हो है अपनो इंडो जी को मुख्य उद्देश्य है ओ कई है?
1: उद्देश्य को ओ है कि आपा जट तक समझा हा कि जट तक खेत की मिट्टी स्वस्थ होई।
0: हाँ।
1: तो मिट्टी स्वस्थ होई तो बी हुई स्वस्थ फसल होई और भी स्वस्थ फसल हुई आपनों सभी मानव जाति को जो तो फूल स्वस्थ स्वास्थ्य है वो हाँ। स्वस्थ होई। तो ई तरीकों पूरो स्वास्थ्य का प्रबंधन की खातर इको करवाए मुख्य उद्देश्य है। और इके मायने जो बार जो असंतुलित रासायनिक खादों को उपयोग कर रहे हैं यूं अपनी उत्पादकता भी कम हो रही है और जो उत्पाद मिल रही है फसल उत्पाद जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो असंतुलित हो रही है और भी अल्टीमेटली आपनो स्वास्थ्य प्रभावित हो रही है। तो ये सब चीजा ने समन्वित कर और जैविक पदार्थ को इनकॉर्पोरेशन कर और जो स्वास्थ्य बनाबाई कोशिश है भी को खेत बचाओ अभियान चलावा को मुख्य उद्देश्य है।
0: डॉक्टर साहब मृदा परीक्षण आधारित जी को पोषक तत्व प्रबंधन है और खेत बचाओ अभियान रो महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों है?
1: वो ई खातर महत्वपूर्ण हिस्सो है दिनेश जी।
0: हाँ?
1: के जद आपा कोई रिपोर्ट करावा।
0: हाँ?
1: आप जान डॉक्टर करने भी जावा।
0: हाँ?
1: तो वो भी अपनी रिपोर्ट करार पच बी के अनुसार आपने दवाई देवे।
0: हाँ?
1: बयान की बयान सेम तरीको आपने जो खेत है।
0: हाँ?
1: की मिट्टी स्वस्थ है या अस्वस्थ है ई को आप जांच कराबो आपने पतो चाले है।
0: हुँ?
1: कि भाई इमें किसा तत्व की कमी है और किसा तत्व की कमी नहीं है। अगर आप बिना जांच करता जाओ तो कुछ पोषक तत्व तो बढ़ता जाए और कुछ पोषक तत्व लगातार कम होता जाए और भी अपनी उत्पादकता कम हो जाए। ई खातर प्रशिक्षण करा मिट्टी को और फिर आप देवत भी अपनी उत्पादकता भी बेढ़ी लागत भी कम आए।
0: कुल मिलान आठा पड़ जा सा के मृदा परीक्षण हो जा तो भाई किसा उर्वरक देवना है तत्वरी कमी हो तो देवना है
1: बिल्कुल
0: और नहीं है तो वे नहीं देवना है।
1: नहीं देवना
0: है।
1: बात आई बात मेन
0: बात है साथ है जीव किसान ने जीव आप बात करा के भाई आप जो को खेत है मिट्टी रो जी को परीक्षण है वो कितनी दान कराना चाहिए?
1: सामान्यतः 2-3 साल में एक बार जरूर मिट्टी परीक्षण कराना चाहिए।
0: हाँ?
1: लेकिन आजकल आपने किसान भाइयों अपनी फसल इसी है जो ज्यादा उत्पादन दे रहे या किस्म इसी है।
0: हाँ?
1: बा अगर ज्यादा उत्पादन दे रही है तो इस कमाईना आपने समय समय पर मतलब परीक्षण कराबो जरूरी है।
0: टाइम
1: माता आप इको परीक्षण कराता रहा तो अपन ठा पड़ते रहे की भाई की किसा तत्व की कमी हो रही है और किसा तत्व बढ़ रही हो तो बी हिसाब सामान्यतः 2-3 साल में एक बार तो जरूर
0: सही बात पते सा। एक बात आवे मृदा परीक्षण किसान भाई जी का है उन्होंने कौन कौन सी जी की जानकारी है वह मिल जावे?
1: देखो मृदा परीक्षण आप करा

0: तो मेन चीज आपने मिट्टी को पीएच का ही है,
1: हाँ
0: अलवणीय है या इमें कार्बनिक कार्बन कितरो है, इमें अवेलेबल नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास और जन माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिंक सल्फर आयरन और बोरोन, ये तत्व की स्थिति में है कितना है, ये चीज को अपन ने पतो चल जावे। साथ ही आपा जब प्रशिक्षण करावा तो
1: हाँ
0: बिने वैज्ञानिक है बे इमें उर्वरक की अनुशंसा करे कि भाई ये खेत के माये तो उर्वरक दियो आ खाद दियो आ जैविक खाद दियो, ये चीज को भी अपन ठा पड़ जावे। ये खातर मिट्टी प्रशिक्षण करवाए खातर बहुत जरूरी है जानकारी ले भाई खातर।
1: एक बात समय आवे के अपनो अथुनो राजस्थान है, अठारी जी की मिटिया है, इन्होंने मैंने प्रमुख रूप से जी का पोषण संबंधी जी की समस्या है वह किसी किसी वे सके।
0: देखो अपन ध्यान है कि आपने अटे धूप यानी कि तावड़ो बहुत
1: हाँ
0: ज्यादा पड़िया करे, टेम्परेचर भी 40-45 डिग्री तक भी आपने गर्मियों में चले
1: पहुंच
0: जाओ,
1: जावे सर।
0: एक अतर कार ऑर्गेनिक कार्बन
1: हाँ
0: वो आपने जमीन के मायने बहुत कम है, और साथ ही साथ देखा तो कई क्षेत्र में जिंक सल्फर की कमी देखने मिली है, और एक अलावा जो आपने जो ऑर्गेनिक पदार्थ है बाकी तो हमेशा ही कमी रही है, यूं आपने मिट्टी की जो जल धारण क्षमता है और जो उत्पादकता है वह प्रतिकूल तरीकों प्रभावित हो ही है।
1: हाँ और साथ जो खेत बचाओ अभियान है, इंद्र मैंने जी की हरी खाद है, साथ साथ जैविक खाद है, इन माते विशेष तौर से जी को जोर धीरे धीरे है, तो वो कई कारण है।
0: ओ यान ऐसा कि बार आप लगातार एक बार किसान यान समझ गया भाई कि रासायनिक उर्वरक देवों बहुत बढ़िया
1: उत्पादन
0: पैदावार
1: हल हो गए।
0: है,
1: हाँ
0: लो
1: हाँ
0: इमें वे सब ज्यादा दे रहा है। अब यूं हुयो कहीं है कि मिट्टी की स्वास्थ्य खराब होगी,
1: हाँ डेल डोल खराब हो गो।
0: हाँ तो अभी का मायने कहीं कभी मैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है सूक्ष्म जीव है
1: हाँ
0: वे जो तो सक्रिय है वे
1: हाँ
0: कम सक्रिय हो गया, बाकी जल धारण क्षमता ही बा घट गई। अब आप जब में हरी खाद और जैविक पदार्थ देवा जान ऑर्गेनिक मेन्योर देवा तो अम्बा को सूक्ष्म जीव की एक्टिविटी बढ़े, इनकी जल धारण क्षमता बढ़े, पोषक तत्व जमीन में है वो पौधा न उपलब्ध हो जावे, इनकी
1: हाँ
0: क्षमता भी जमीन की बढ़िया करे। ई खातर आप ज्यादातर किसान ने अभियान में जोर दे दिया कि हरी खाद या ऑर्गेनिक खाद का रूप में पोषक तत्व दो टीको स्वास्थ्य सुधरे।
1: कुल मिलान बात है कि किसान भाई रे सामी सवाल आवे और मन में जहन में भी आवे कि भाई खाली यूरिया देवा तो आप ज्यादा प्रयोग करें तो ज्यादा फसल हो सके।
0: नहीं नहीं यान की बात आ सही को नहीं,
1: हाँ
0: क्योंकि ज्यादा यूरिया देवा तो एक बार अपन पौधो बुढ़ो हरियो दिख जाए
1: हाँ
0: पर वास्तव के मायने वो भी उत्पादन नहीं बढ़े, बल्कि जो कीट है जो रोग हुए वे ज्यादा बढ़िया करे और मिट्टी को जो संतुलन है वो भी खराब हुआ करे। केवल यूरिया देवो नी कोई फायदो ई खातर ई विचार ने ई भ्रम ने तोड़वाई खातर खेच बचाओ अभियान चालू करियो।
1: सही बात बताई सा। और साथ जी आप बात करा एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन है जिन्हें INM किया करे, तो इनरो कई महत्व है।
0: देखो यान है कि एकीकृत पोषक प्रबंधन में जहां रासायनिक खाद है बी के
1: हाँ
0: साथ आप जैविक खाद है हरी
1: हाँ
0: खाद है अपना क्रॉप रेजिड्यू है फसल अवशेष है या बायो फर्टिलाइजर है या अपने क्रॉप रोटेशन है, अलग अलग तरह के कई क्रियाएं हैं जो आप पोषक तत्व को प्रबंधन कर सका। आ सबने मिला और मिट्टी को प्रबंधन कराते हैं उर्वरता भी बढ़े है और जो उर्वरक की जो उपयोग इफिशियंसी है यूज इफिशियंसी जिन्हें
1: हाँ
0: आपस थोड़े बोल रहा बात भी बढ़े रही, सस्टेनेबल अपने प्रोडक्शन मिलते रहे, खातर इंटीग्रेटेड पोषक तत्वों को विशेष महत्व रहे।
1: सही बात बताई सर। साथ साथ है आज किसान कहने जी की जमीन है वह सीमित है, पानी भी जी को है वो सीमित है, किसान भाई कोशिश रहे कि भाई जी की माणिया मिट्टी है या जमीन है, तो इन महीने में मृदाओं संबंधित जी का स्वास्थ्य सुधार है वे किस किस तरीकों कर सका और जी का सरल जी का उपाय है वे की कर अपना सका।
0: देखो एक मैं सबू पहलो उपाय है कि आप सोइल टेस्ट कराओ आपकी जमीन में,
1: मिट्टी
0: मिट्टी की
1: जांच
0: जांच
1: करो।
0: कराओ,
1: हाँ
0: दूसरो बी का आधार पर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बने तो बी की अनुशंसा के हिसाब ही खाद दियो,
1: सही है।
0: ठीक है। फिर आप गोबर की जो सड़ी खाद है कंपोस्ट खाद है बी ने
1: हाँ
0: जरूर बीच के मैं ले रहो वह भी खेत में डालो हरी खाद डालो, और जो क्रॉप रेजिड्यू फसल अवशेष है वह
1: हाँ
0: आजकल अगर किसान कहीं करेगा बाको मैनेजमेंट नहीं करे
1: हाँ
0: तो
1: जला
0: बाको
1: दे
0: हाँ
1: वाले।
0: बा जला भी देवे या बाने भी पड़ा सूख जावे तो
1: हाँ
0: बाने सही तरीकों उपयोग करवा को उपयोग करना चाहे, और मिट्टी प्रशिक्षण का आधार पर ही खाद को उपयोग करो और बायो फर्टिलाइजर इको जरूर आपने इसमें समावेश करना चाहे, यूं आपने बड़ो सरल उपाय है।
1: डॉक्टर भगवत सिंह जी राठौर साहब, हालता हालता आप बताओ कि भाई खेत बचाओ जी को अभियान है, इनके अंतर्गत जी का किसान भाई है, उनके वास्ते आप रो कई संदेश है।
0: देखो मारो संदेश बहुत सीधो है, धरती माता भी अपनी माँ है
1: सही है सर।
0: और कई सदियों अपना टाबर ने पोषण कर रही है,
1: हाँ
0: लेकिन को बाढ़लो टाबर अटे घर गांव में आया बाद
1: हाँ
0: अपन भी माँ को हालचाल पूछे एक नहीं पूछे इकी
1: हाँ
0: कोई गारंटी को नहीं, ब्या नहीं अपनी जो सरकार है आ विशेष ध्यान दे और धरती माता का स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही है कि भाई को स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, एक ही खातर अपन किसान भाइयों की और अपनी सबकी जवाबदारी अब

0: कि आपा मिट्टी को प्रशिक्षण करावा, सोइल टेस्ट करावा और
1: हाँ
0: बी के आधार खाद भी दिया, पानी दिया, तो भी अपनी जो जमीन है अपनी खाद आपने भी पोषण करेली और अपनी आवती पीढ़िया को भी पोषण करेली लंबा समय तक आपने उपलब्ध रही।
1: बहुत
0: कोई
1: बहुत धन्यवाद डॉक्टर भगवत सिंह जी राठौड़ साहब। आप खेत बचाओ अभियान रे अंतर्गत मृदा परीक्षण आधारित पोषक तत्व प्रबंधन विषय माते बहुत ही बढ़िया किसान भाई ने जानकारी दे रही। आपने बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम।
0: राम राम सा राम राम।
1: किसान भाइया आज आपने साथे हा डॉक्टर भगवत सिंह राठौड़ आप प्रधान वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष है काजरी कृषि विज्ञान केंद्र जोधपुर सु पधारिया। कृषि जगत प्रोग्राम रो भगत पूर्व वेरियो है दिनेश राणे जाने शिख दिराओ राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल। श्रोताओं दिन के 1:15 हो चुके हैं, लीजिए प्रस्तुत है आधी आबादी का पसंदीदा कार्यक्रम नारी वाटिका।

0: नारी वाटिका सुनने वाली सभी प्यारी प्यारी सखियों का तहे दिल से अभिनंदन। और आज के कार्यक्रम का सफर आप तय करेंगे आपकी अपनी रेडियो सखी ज्योत्सना और
1: हंसा विश्नोई के साथ।

0: तो हंसती मुस्कुराती ज्योत्सना, कैसी हो आप?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं हंसा जी?
0: मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, सखियों की तरह। और
1: और गर्मी बहुत है, उफ ये गर्मी।
0: गर्मी तो है, लेकिन ये गर्मी ही है जिसने हमारी छुट्टी करवाई है।
1: बिल्कुल
0: बच्चों की तरफ से हम थोड़े निश्चिंत हुए हैं, और ऐसे छुट्टियों में ये जो बच्चे हैं वो इधर उधर घूमने को जाते हैं, अपने नाना नानी के पास जाते हैं, दादा
1: माँ,
0: दादी के पास जाते हैं।
1: बिल्कुल माँ पहुंच तो जाते हैं पर उनसे सवाल भी बहुत करते हैं, हर चीज में बार बार सवाल करते हैं, ये ऐसा क्यों है, ये
0: हाँ,
1: वैसा क्यों है।
0: ये जो उत्सुकता है वो उत्सुकता उन्हें बहुत कुछ सिखाती है ज्योत्सना।
1: जी
0: अच्छा, एक छोटा सा बच्चा था, तो वो जो अपने दादा के पास गया तो बड़े गर्व से बोला कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं बहुत सफल आदमी बनूंगा, पर आप मुझे एक बात बता दो दादाजी कि सफल कैसे होते हैं,
1: जी
0: गुर बता दो। तो दादाजी ने सिर हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसको अपने पास, घर के पास जो पौधशाला थी उसमें लेकर गए।
1: अच्छा
0: छोटे छोटे दो पौधे खरीदे वहां से उन्होंने और घर वापस आ गए। वापस लौटकर उन्होंने एक पौधा घर के बाहर लगा दिया और एक को गमले, एक जो गमला था उसको घर के अंदर रख
1: जी,
0: दिया।
1: फिर बच्चे ने पूछा होगा, इस
0: हाँ
1: पर भी सवाल पूछ लिया होगा।
0: हाँ तो और पूछा, तब जब पूछा कि ये क्या ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है कि इन दोनों पौधों में भविष्य में कौन सा पौधा अधिक फलेगा फूलेगा। तो पोता कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर बोला कि दादाजी ये जो घर के अंदर जो पौधा है ना वो बहुत अच्छा होगा, बड़ा होगा, फलेगा, क्योंकि अब ये देखो ना, बाहर रहेगा तो इसको बहुत खतरा
1: जी
0: रहेगा, लेकिन
1: जी
0: घर के अंदर रहेगा तो इसको खतरा
1: सुरक्षित रहेगा।
0: सुरक्षित रहेगा, और तेज धूप जो आती है, आंधी पानी, जानवर जो भी हो उसका कोई खतरा नहीं। तो दादी बोलते चलो देखते हैं आगे क्या होता है। कुछ दिनों बाद छुट्टियां जो है वो खत्म हो गई ज्योत्सना, और जो
1: जी
0: पोता था वो वापस शहर चला गया। इस बीच जो दादाजी थे वो दोनों पौधों में बराबर ध्यान देते रहते हैं। समय बीतता गया। 3 4 साल के बाद में एक बार जब वो अपने अपने गांव आया
1: जी
0: बच्चा, तो उसने उसे याद आया, तो उसने बोला फिर से कि आपने मुझसे बोला था कि मैं आपको सफल होने के कुछ गुर बताऊंगा, तो बताइए, अब तो बताना चाहिए, मैं बड़ा भी हो गया हूँ। तो दादाजी थोड़ा सा मुस्कुराए और उस जगह पर ले गए जहाँ गमले गमले को उन्होंने वहां से पौधा लगाया था।
1: जी
0: बाहर वो पौधा बड़ा खूबसूरत पेड़ बन गया था। तो दादाजी ने कहा देखो ये वही वाला है। अच्छा, तो आपने अंदर भी कुछ रखा था ना, पोते ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो अंदर वाला था वो फला फूला
1: नहीं
0: नहीं।
1: है।

0: और जो बाहर वाला था वो विशाल वृक्ष बन गया, क्योंकि उसकी जो शाखाएं थी वो दूर तक गई, उसकी जड़ जो थी वो दूर तक रही। इसका
1: स्वतंत्र
0: मतलब
1: थी ना, खुला
0: स्वतंत्र
1: था।
0: थी और उन्होंने सामना किया ना बाहर वाली परिस्थिति का।
1: बिल्कुल
0: तो इसका मतलब यही हुआ कि आप चुनौतियों का यदि सामना करते हो तो आपके पास लाभ ही
1: लाभ
0: लाभ
1: है।
0: है।

0: देव जी को तपते हुए तवे पर बिठाया गया और उन पर गरम रेत भी डाली गई और उबलता हुआ पानी भी डाल दिया गया था। तब लेकिन इतनी पीड़ा के बाद भी उन्होंने वाहेगुरु की रजा को स्वीकार करते हुए कहा, तेरा किया मिठा लागे, चाहे सुख हो या दुख या फिर शहीदी ही हो। मतलब उनको था कि जो भी वाहेगुरु करते हैं वो सब अच्छा ही करते हैं, और उसके कारण भले उनकी जान भी चली जाए, वो शहीद भी हो जाएं, तो भी वो उसमें गुरु की ही रजा होती है।
1: मतलब इतना सकारात्मक रवैया।
0: जी बिल्कुल। तो गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी को याद करते हुए सिख समाज ने गर्मियों में लोगों को ठंडे पानी और मीठे शरबत पिलाने की सेवा शुरू की, जिसे छबील सेवा कहा जाता है। यह प्यार, सेवा और इंसानियत का पैगाम है। और इस वर्ष गुरु अर्जुन देव जी का 420वां शहीदी दिवस मनाया जा रहा है।

0: हंसा जी, हम बात कर रहे थे अभी गर्मियों की, और तपती हुई गर्मियों में आपने सड़कों पर और कहीं बहुत जगह पर छबील सेवा ज़रूर देखी होगी।
1: छबील सेवा वही ना जिसमें मीठा शरबत पिलाया जाता
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल। लेकिन क्या आप जानते हैं इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई?
1: नहीं, आप बताएं।
0: जब 1606 ईस्वी में जब लाहौर में सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन

0: जी हाँ सखियों, आज गुरु अर्जुन देव सिख समुदाय के जो प्रथम शहीद हैं उन्हीं के नाम पर शहीदी दिवस है। और इस दिन को विभिन्न जो लोग हैं वो विभिन्न धार्मिक आयोजनों और गुरुद्वारों में निशुल्क भोजन वितरण करके इसको मनाते हैं। और आपको बता दूं मैं कि हमारा जो हम स्वर्ण मंदिर देखने जाते हैं अमृतसर में,
1: जी
0: उसकी स्थापना की पहल इन्होंने ही की थी। साथ में गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन भी इन्होंने किया था। अर्जुन जी एक उत्कृष्ट कलाकार थे और समानता के प्रबल समर्थक थे।

0: हंसा जी, हम अपनी सखियों को बताएं कि आज एक विशेष दिन भी है। भोजन मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है, और जब हम भोजन में प्रेम, इमेजिनेशन और हुनर के साथ तैयार करते हैं तो वो पाक कला का रूप ले लेता है।
1: तो आज पाक कला दिवस है।
0: बिल्कुल, हर साल 18 जून को पाक कला दिवस मनाया जाता है। ये दिन रसोइयों, गृहिणियों, शेफ्स और उन सभी लोगों के योगदान को सम्मान देने का अवसर है जो अपने हाथों से स्वाद से जीवन में मिठास घोल देते हैं।
1: और फिर जब इतनी तेजी से जो हमारी जीवन शैली बदल रही है उसमें हम स्वस्थ रहें, ये एक चुनौती है।
0: जी
1: इसके लिए इन दिनों हम बहुत एक कॉमन शब्द सुनते हैं, मिलेट्स,
0: जी
1: है ना,
0: बिल्कुल
1: जिसको श्री अन्न भी कहा जाता है। तो इसी विषय पर आज हमने एक वार्ता रखी है अपने सखियों के लिए। श्रीमती गायत्री खेतावत जो मिलेट्स पर आपको बताएंगी, और बता दें कि गायत्री जी जो है वो पिछले कई वर्षों से स्वास्थ्यवर्धक खान पान से संबंधित सेमिनारों और कार्यशालाओं से जुड़ी हुई हैं। तो आइए सुने।
2: आकाशवाणी जोधपुर के नारी वाटिका के समस्त श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए मुझे अवसर मिला। भारत सरकार ने 2023 में मिलेट की विशेषताओं को देखते हुए इसका श्री अन्न नाम दिया। मिलेट सुपर फूड है, वह हमारा पारंपरिक आहार भी है। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी है और इसके नियमित सेवन से हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है तथा जीवन शैली संबंधी रोगों को कम करने में भी इसके सेवन से बहुत सहायता मिलती है। हमारे पूर्वज भी अपने दैनिक जीवन में श्री अन्न का उपयोग करते थे, इसी कारण उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था। आज के समय में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही है। इसका मुख्य कारण हमारी बदलती जीवन शैली और गलत खान पान की आदतें हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के असंतुलन उत्पन्न हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज असंतुलन, हार्मोनल असंतुलन तथा आंतों में सूक्ष्म जीवों का असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में हम जिन प्रमुख अनाजों का अधिक सेवन कर रहे हैं, जैसे गेहूं, चावल, मैदा, ये भी इसके मुख्य कारण हैं। गेहूं और चावल की बात करें तो इसमें रेशा बहुत कम होता है व गेहूं में ग्लूटेन भी बहुत अधिक होता है। इस असंतुलन को दूर करने के लिए हमें अपने दैनिक आहार में श्री अन्न को शामिल करना चाहिए। श्री अन्न में रेशे की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसमें ग्लूटेन नहीं के बराबर होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। इसकी बाहरी परत लिग्नान्स की होती है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है, और इसके नियमित सेवन से हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है और हमारे पाचन तंत्र के लिए भी ये बहुत फायदेमंद होते हैं। मिलेट्स में कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की संरचना ऐसी होती है कि इनके सेवन से ग्लूकोज बहुत धीमे धीमे बनता है और इस कारण ग्लूकोज का जमाव भी नहीं होता है। मिलेट पोषक तत्वों का भंडार है, इसमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक तथा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इनके नियमित सेवन से उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मोटापा तथा त्वचा संबंधी बीमारियों में भी हमें बहुत फायदा मिलता है। श्री अन्न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छे माने जाते हैं। इनको उगाने में पानी की मात्रा बहुत कम

0: चाहिए वह कीटनाशक का उपयोग नहीं होता है। श्री अन्न को पकाते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें अनपॉलिश्ड श्री अन्न या मिलेट खरीदना चाहिए। अनपॉलिश्ड की पहचान, उन सब के अलग अलग रंग होते हैं और उनमें एक काला डॉट होता है। एकदम पॉलिश साफ सुथरा मिलेट हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा, कोई भी मिलेट्स को हमको 6 से 8 घंटे भिगोकर ही पकाना है, अन्यथा वो हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं होंगे। वह मिलेट्स को प्रेशर कुकर में नहीं पकाना है, खुले बर्तन में धीमी आंच में पकाने से वह हम संपूर्ण फायदा देते हैं। हमें अपने खाने में सभी प्रकार के मिलेट्स को शामिल करना चाहिए। ये बहुत तरह के होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पॉजिटिव मिलेट्स, न्यूट्रल मिलेट्स और सूडो मिलेट्स है। पॉजिटिव मिलेट्स की बात करें तो ये 5 तरह के शामिल किए गए हैं, जिनके मुख्य नाम सावा, कोदो, कंगनी, कुटकी और हरी कंगनी है। इसके इंग्लिश नाम भी बहुत प्रचलन में है, जो कि इस प्रकार है: बर्नियार्ड मिलेट, कोडो मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट एंड ब्राउन टॉप मिलेट। इसके अतिरिक्त हम लोग अपने दैनिक जीवन में बाजरा, जवार, रागी तथा मक्का खाते हैं, वो भी मोटा अनाज है, इनको न्यूट्रल मिलेट भी कहते हैं। वह व्रत के दौरान हम जो राजगिरा, कुट्टू खाते हैं, उनको सूडो मिलेट्स की कैटेगरी में रखा गया है, वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। वह किनोवा भी सूडो मिलेट्स की श्रेणी में रखा गया है। हमें अपने दैनिक जीवन में इन सब अनाज का बदल बदल के उपयोग करें तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। मिलेट्स से हम अनेक प्रकार के पारंपरिक तथा आधुनिक व्यंजन बना सकते हैं। मिलेट्स खिचड़ी, मिलेट्स चीला, मिलेट्स पुलाव, मिलेट्स खीर आदि, डोसा, इडली, उत्तपम, सूप, ढोकला, मिलेट्स पॉरेज, मिलेट्स स्मूदी, मिलेट्स कुकीज, मिलेट्स सलाद और इसके साथ साथ थाई करी में चावल की जगह भी हम मिलेट्स को काम में ले सकते हैं। मिलेट्स श्रीखंड भी बहुत अच्छा बनता है, जिसकी विधि मैं आपके साथ शेयर करूं। इसके लिए हमें 1/4 कप कंगनी, 2 कप बंधा हुआ दही, 1/2 कप पीसी हुई चीनी, 2 चम्मच क्रीम, 4-5 धागे केसर और पिस्ता, बादाम, इलायची सजावट के लिए चाहिए। इसको बनाने के लिए कंगनी को धोकर 6 से 8 घंटे भिगो दें। अब इसको मिक्सी में पीसकर धीमी आंच में उबाल लें। जब ये अच्छे से पक जाए तो इसको ठंडा होने के लिए रख दें। अब एक बड़े बर्तन में बंधा हुआ दही, पीसी हुई चीनी और क्रीम मिलाकर अच्छी तरह फेंट लें। केसर को थोड़े से गुनगुने दूध में भिगोकर दही के मिश्रण में मिला दें। अब ठंडी की हुई कंगनी का मिश्रण भी इस मिश्रण में डालकर अच्छी तरह से मिलाएं और थोड़ा सा फेंट लें। तैयार श्रीखंड को 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। परोसने से पहले पिस्ता, बादाम और इलायची से सजाएं। यह बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और हमारे शरीर के लिए पौष्टिक और स्वास्थ्य वर्धक भी है, तो आप इसको बना के अच्छे से खाएं। तो आपने देखा कि मिलेट्स न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक है, बल्कि उनसे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले अनेक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन भी बनाए जा सकते हैं। इसलिए अपने खान पान में मिलेट्स श्री अन्न को अधिक से अधिक शामिल करें। इससे हमें संतुलित पोषण प्राप्त होगा और जीवन शैली से जुड़ी अनेक बीमारियों से बचाव में भी सहायता मिलेगी तथा हमारा स्वास्थ्य वर्तमान और भविष्य दोनों में बेहतर बना रहेगा। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए मिलेट्स को अपनी थाली का नियमित हिस्सा बनाएं।
1: सखियों, अभी हम सुन रहे थे श्री अन्न मिलेट्स पर वार्ता। वार्ताकार थी श्रीमती गायत्री खेतावत। आइए मधुर गीत।

0: रोटी पाने का दर्द वो ही बता सकता है ज्योत्सना, जिसे भरपेट भोजन नहीं मिलता है।
1: जी
0: शैलेंद्र जी ने कितनी गहरी बात कही है इस गीत में।
1: बिल्कुल। और भोजन हमारी जीवन शैली का भी दर्पण है, हमारी परंपराओं का भी दर्पण है, और सारी हम साथ में हमारी संस्कृति का भी दर्पण है। भोजन में हंसा जी पत्तियों का यूज़ भी होता है, जड़ों का भी होता है, सब्जियों का भी होता है, फल मसाले दूध से बनी चीज़ें, इन सब का, और खासकर जल का भी
0: वो तो है
1: हिस्सा है।
0: ही।
1: पर
0: देखो इंसान जो है ना,
1: जी
0: हम इंसान बड़ा खोजी प्रवृत्ति का होता है।
1: जी
0: उसने हर चीज का उपयोग जाना है
1: बिल्कुल खोज
0: तो
1: लिया।
0: खोज लिया है, उसने जो भी उसके सामने उसने देखा है कि इस चीज से हम क्या अच्छा पा सकते हैं।
1: इसी खोजबीन के दौरान थोड़े दिन पहले ही मेरे पास भी ये खोज आई कि हम फूलों को भी भोजन का हिस्सा
0: हाँ
1: बना
0: हाँ
1: सकते
0: है ना।
1: हैं। उनकी बात करें फूलों की, तो वो भोजन का हिस्सा बनकर उनकी खुशबू, स्वाद, रंग और पोषण को बढ़ाते हैं। अगर बात की जाए खुशबू की, तो सबसे पहले मन में आता है गुलाब का फूल।
0: गुलाब क्या नहीं बनता उस गुलाब से।
1: बिल्कुल
0: गुलाब का जो इत्र था ना, वो भी कुछ
1: जी
0: ऐसे ही बना था। उसका उसका जो इजाद हुआ था वो भी कुछ ऐसे हुआ था कि वो पानी में
1: जा रहा होता
0: जा रहा
1: है।
0: होता था, और वहाँ उस एरिया से, उस क्षेत्र से बड़ी प्यारी खुशबू आती थी। तो इस तरह से गुलाब से हम बहुत सारी चीज़ें इंसान ने बनाना सीखा। तो गुलकंद तो है ही,
1: जी
0: उसके अलावा कई तरह के शरबत होते हैं, हम पीते ही हैं इन
1: बिल्कुल
0: गर्मियों में। केक में भी और मिठाई में भी इस गुलाब का इस्तेमाल
1: बिल्कुल
0: होता है।
1: जी। स्वाद भी बढ़ जाता है, रंग भी और खुशबू भी। और ऐसा ही फूल एक चमेली का फूल है, अगर
0: वो भी
1: किसी भी
0: खुशबूदार है।
1: बिल्कुल किसी भी पेय पदार्थ में डाला जाए तो उसकी महक और भी बढ़ा देता है। और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं, उससे जो हम उसको जब हम

0: खाते हैं तो विटामिन डी का वो अच्छा स्रोत भी बन
1: हम्म,
0: जाता है। और एक और फूल है जो शायद सखियों को नहीं पता होगा, गेंदे का फूल। हम उसको पूजा में तो इस्तेमाल करते ही हैं, हम उसको खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: अच्छा
0: इसे सुखा के ड्राई करके इस गेंदे की पंखुड़ियां अगर सलाद में यानी ड्राई डस्ट के तौर पर अगर यूज़ की जाए, सजावट के लिए काम आती हैं।
1: अच्छा वैसे तो अभी तक तो ये था कि जो फूल हैं अगरबत्तियों में और जो धूप
0: भीनी
1: सामग्री
0: भीनी
1: होती है,
0: खुशबू सलाद में भी दे
1: हाँ
0: देता है।
1: सलाद में भी देते हैं, बहुत अच्छा।
0: और फूलों से चाय भी बनती है। अगर हम चाय भी बनती है और रंग भी देते हैं। अगर बात करें गुड़हल के फूल की तो वो लाल रंग देता है। अपराजिता का फूल जिसे बटरफ्लाई पी फ्लावर कहा जाता है,
1: नीला रंग का,
0: बिल्कुल नीला रंग देता है। वहीं पारिजात अर्थात हर श्रृंगार का फूल जिसकी डंठल जो पीछे से केसरिया रंग की होती है, अगर उसकी चाय पी जाए तो वो गोल्डन वाटर के तौर पर जानी जाती है।
1: बहुत अच्छी जानकारी दे रही हो। अच्छा
0: और
1: मैं भी अब तुम्हें बताऊं,
0: जी जी जी जी
1: जो कद्दू लौकी के जो फूल होते हैं,
0: हाँ जी
1: केले के जो फूल होते हैं,
0: जी
1: और सहजन जिसको मोरिंगा कहते हैं, उसके भी जो फूल होते हैं उनके पकोड़े बनते हैं।
0: मानसून दस्तक देने वाला आंसर जी।
1: बिल्कुल सही। और बहुत सहजन तो ऐसा कहते हैं कि उसमें हर चीज है, उसमें प्रोटीन्स हैं, विटामिन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, मतलब वो सर्वगुण संपन्न
0: बिल्कुल
1: है, ऐसा पेड़ है, ऐसा वृक्ष है, और बहुत आराम से लगता है। सखियां चाहे तो अपने घर के बाहर इसकी कहीं से भी कोई शाखा मिल जाए तो इस मानसून में यदि आप उसे रोपते हैं तो बहुत आसानी से लगता है। इसकी फलियां का इस्तेमाल तो हम सब
0: जी
1: जानते ही हैं,
0: ड्रमस्टिक्स के
1: कढ़ी
0: रूप
1: में,
0: में
1: हाँ,
0: जी
1: लेकिन इसके जो पत्ते होते हैं और इसके जो फूल होते हैं छोटे
0: जी
1: छोटे,
0: जी
1: उनके सब्जी भी बहुत अच्छी बनती है, पकोड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं, और लौकी के पत्तों, लौकी के फूलों की भी बहुत अच्छे से खाई
0: जी
1: जाती है। छत्तीसगढ़, स्पेशली छत्तीसगढ़
0: जी
1: वाला जो
0: जी जी
1: इलाका है, झारखंड छत्तीसगढ़, वहाँ पर ये बहुत इस्तेमाल होता है। केला जो है वो साउथ
0: साउथ
1: इंडिया
0: इंडिया का
1: में
0: है
1: ऐसा इस्तेमाल होता है।
0: जी। और एक बहुत ही नायाब फूल है जिस जो बहुत एंटीऑक्सीडेंट है और बहुत ही रिलैक्सिंग मूड देता है। जब भी हम थकानवट महसूस करते हैं या थके हुए हैं तो उसकी चाय अगर हम बनाकर पी सकते हैं। उसका नाम है कैमोमाइल का फूल।
1: अच्छा
0: बहुत ही सुंदर सा सफ़ेद फूल होता है, उसको भी हम चाय में डाल के पी सकते हैं।
1: चलिए,
0: और
1: हाँ, अब एक प्यारे से गीत की तरफ
0: जी
1: चले।
0: बिल्कुल

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: सखियों, आप सुन रही हैं कार्यक्रम नारी वाटिका। हम हैं आपके साथ हंसा और ज्योत्सना।
4: बात कर रहे थे भोजन की और रसोई की, रसोइयों को सम्मान देने की। तो जब रसोई की बात आती है तो मन में आता है कि रसोई तब है जब रसोई में रस है।
3: बिल्कुल, रस से रसोई शब्द बना है।
4: रसोई में बनने वाले व्यंजन में केवल मसालों की खुशबू ही नहीं होती हंसा जी, भोजन बनाने वाले का स्नेह, परिवार की खुशियाँ, दादी नानी की पुरानी रेसिपीज की यादें और त्योहारों की मिठास के रस भी घुले होते हैं।
3: बिल्कुल।
4: और आयुर्वेद के अनुसार 6 रस होते हैं, मधुर रस, अम्ल रस, लवण रस, कटु, तिक्त और कषाया रस।
3: तिक्त रस, कड़वा स्वाद वाला। तो ये जो तिक्त रस है उस पे आज हम बात करते हैं सखियों। ये तिक्त रस जो होता है वो हमारे शरीर को शुद्ध करने का काम करता है।
4: बिल्कुल।
3: हमारे शरीर का जो पाचन तंत्र है उसको सुधारने का काम करता है और हमारे शरीर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उनको बाहर निकालने में मदद करता है पाचन तंत्र की। तो वो देखिए, वो चीजें जो हमारे बच्चे पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें तिक्त रस होता है,
4: मुंह बनाते हैं,
3: करेला खाना नहीं चाहते, मेथी खाना नहीं चाहते, गिलोय जैसी चीजें नहीं पीना चाहते जो भी होती हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियों में भी तो वो मुंह बनाते हैं।
4: जी बिल्कुल।
3: तो जो हम जो उन जो जीभ को स्वाद नहीं लगता, जीभ में मधुरता नहीं घोलता है, वो रस होता है तिक्त रस।
4: पर बच्चों को बताना भी जरूरी है कि मौसम बदलता है तो हमारी शरीर की जरूरतें भी बदलती है और उस हिसाब से हमारी थाली का स्वाद भी बदलता
3: है, अपने आप बदलता है। क्योंकि देखो ना, जिस मौसम में जो चीजें हमें चाहिए होती हैं वो तभी फलती फूलती है। मतलब प्रकृति ने मनुष्य के साथ इतना अच्छा सामंजस्य बैठा है कि जब हम इन सारी चीजों को जोड़ कर देखते हैं तब हमें पता चलता है।
4: बिल्कुल, बैलेंस है, योग है उसके अंदर। और हमारा भारत तो अनेकताओं में एकता का देश है, तो जब कड़वे की बात आती है तो जगह जगह तरीका अलग है लेकिन मकसद एक ही होता है। जैसे हम गुड़ी पाड़वा के दिन नीम का खाते हैं, हम नवरात्रि जो आती है, अप्रैल वाली जो नवरात्रि, उसमें भी नीम का पत्तियां कोपले खाते हैं ताकि हमारा जो मौसम बदल रहा है उसके साथ साथ हम बदलते जाएं। उसी तरह से हर स्टेट में, हर राज्य में अलग अलग चीज़ें हैं। अरुणाचल में बाँस के कोपले हैं, उत्तराखंड में बिछुआ बूटी है, मेघालय में कंटोला और उसकी पत्तियां खाई जाती हैं, कोंकण में अनार के छिलकों वाली चटनी खाई जाती है, दक्षिण भारत में नीम के फूल, और गुजरात और हमारे राजस्थान में नीम की कोमल पत्तियां खाई जाती हैं। और जिससे बच्चे मुंह बनाते हैं उनको आजकल ग्लोबल वेलनेस में बिटर फूड्स के नाम से जाना जाता है। तो सखियों, मीठे की आदत के बीच थोड़ा सा कड़वा भी अपनाइए, क्योंकि जिंदगी का फलसफा भी यही है कि

0: हर कड़वी चीज नुकसान नहीं करती, कुछ कड़वाटे सेहत में मिठास भी घोल देती हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे हम मेथी की बात करते हैं ना, तो वो कफ और पित्त का संतुलन करती है। आप हम जानते ही हैं, बालों के लिए, त्वचा के लिए, और जो जिनको डायबिटीज है उनके लिए तो रामबाण होती है।
0: जी
1: करेला भी यही गुण करता है,
0: बिल्कुल।
1: और हल्दी जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं, वो भी हर चीज़ में हम उसका इस्तेमाल
0: जी
1: करते हैं, हर
0: जी
1: सब्जी में हम उसको डालते
0: यहाँ
1: हैं,
0: तक उसको अगर हम उगाते भी हैं तो भी वो एंटीसेप्टिक का काम करती
1: काम
0: है।
1: करती है। और हमारे राजस्थान में तो हल्दी हर तरह से खाई जाती
0: जी
1: है ना,
0: बिल्कुल।
1: गीली हल्दी भी खाई जाती है। तो आयुर्वेद में इन सब का बहुत महत्व है, और ये हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी हैं। लेकिन कुछ सावधानी भी इसमें कहता है आयुर्वेद कि शरीर में ज़्यादा इनका सेवन नहीं करना
0: अति नहीं
1: चाहिए,
0: होनी चाहिए।
1: अति नहीं होनी चाहिए ना। उससे क्या होता है कि रूखापन आता है, चक्कर जैसे, थकान जैसे, और
0: जी
1: जहाँ वात रोग जिसको होता है वो बढ़ जाता है। तो बस ये थोड़ी सी चीज़ें ध्यान रखें और इनका जरूर सेवन करें।
2: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

0: मुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये जो कविता है कालजयी कविता है और इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने ज्योत्सना। और आज का दिन 18 जून हम याद करते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को, उनको समर्पित है, उनको याद का दिन है उनकी। और झांसी की बाई रानी को कौन नहीं जानता, 1857 की क्रांति की वीरांगना, महज 29 वर्ष की आयु में देश के लिए वीरगति को पाने वाली महिला और हमारे भारतीय राष्ट्रवाद की सशक्त प्रतीक लक्ष्मीबाई।
1: बिल्कुल, रानी लक्ष्मीबाई सिर्फ एक नाम नहीं है, एक प्रेरणा है, एक साहस है स्वतंत्रता की और अटूट देशभक्ति की।
0: इनका जन्म हुआ था वाराणसी में, बहुत कम उम्र में ही गंगाधर राव से इनका विवाह हुआ, झांसी के राजा से। असल में इनका नाम तो मणिकर्णिका था, लेकिन विवाह के बाद में नाम परिवर्तन का एक रिवाज है, तो इस तरह से उनका नाम लक्ष्मीबाई रखा गया। और उस समय की जो नीति थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो धीरे धीरे, मतलब अंग्रेज सरकार इस ओर बढ़ रही थी कि हम यहाँ पर इन राज्यों को किसी तरह से हड़प लें। तो उन्होंने उसमें हड़प नीति के चलते ही उन्होंने, क्योंकि इनके कोई पुत्र नहीं था और
1: लीगल एयर होना जरूरी था,
0: तो इन्होंने दत्तक जो इनका पुत्र था उसको उन्होंने माना नहीं और इस तरह से हड़पना चाहा। तो डलहौजी के विरोध में इन्होंने जो 57 की क्रांति हुई थी उसमें अपना सहयोग दिया।
1: वो कहती थी कि मैं इनको झांसी नहीं दूंगी, और उनके लिए ये सिर्फ शब्द नहीं थे, संकल्प था, और उन्होंने उस संकल्प को मरते दम तक निभाया।
0: बिल्कुल सही। और कालपे युद्ध में जहाँ पे इन्होंने युद्ध किया, वहाँ पर घमासान युद्ध किया, और कहा जाता है कि उस समय जो स्थिति थी करो या मरो वाली स्थिति थी, लेकिन उसमें भी उन्होंने, कोई कह नहीं सकता था कि एक महिला इतना इतने यश के साथ, इतनी वीरता के साथ युद्ध कर सकती है। और इसी यही कारण है कि आज हम उनके शौर्य का यशोगान करते हैं, हर भारतवासी करता है, उनकी वीरता को नमन करते हुए आज हम उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: इतना प्यारा सा गीत था फिल्म लड़की सहयाद्री का, भरत व्यास जी ने जिसको लिखा था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई पर था। तो जैसे हम इन्हें याद कर रहे हैं, वैसे ही आज एक और महापुरुष को हम याद कर रहे हैं जिनका नाम है मिल्खा सिंह, जिन्हें उड़न सिख के नाम से भी जानते हैं।
4: बिल्कुल,
3: पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और प्रसिद्ध भारतीय धावक जिन्हें आज हम श्रद्धांजलि देते हैं।
4: सन 1960 के रोम ओलंपिक में उन्होंने 400 मीटर दौड़ में 4th स्थान प्राप्त किया था। वे पदक से कुछ क्षण ही दूर रह गए थे, लेकिन उनका प्रदर्शन भारतीय खेल इतिहास में सबसे प्रेरणादायक कहानियों में गिना जाता है। मिल्खा सिंह केवल एक महान धावक ही नहीं बल्कि संघर्ष और आत्मविश्वास के प्रतीक थे। उन्होंने हमेशा युवा पीढ़ी को संदेश दिया कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम और समर्पण का साथ हो। हम भी मिल्खा सिंह के जीवन से ये सीख ले सकते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके इरादे मजबूत और कदम निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं।

0: आप इस नए रंग में रंगी रहें, समाज में खूब सम्मान पाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी भाव से हम अनुमति लेते हैं।
1: और आज के इस पूरे कार्यक्रम में हमारा सहयोग दिया HPT से विक्रम सिंह भाटी और राय सिंह राव ने, कंट्रोल रूम से दिलीप सिंह परमार और FM से प्रवीण कुमार ने।
0: कंसोल पर हमारे साथ थे कपिल चारण जी और हमारे इस कार्यक्रम की परिकल्पना संयोजन किया मनीषा सोलंकी ने। हम थे आपके साथ हंसा विष्णु
1: और ज्योत्सना।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नारी वाटिका। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल और एफएम सन सिटी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज पर और एफएम बैंड 102.1 मेगाहर्ट्ज पर। दिन के 2:15 हो रहे हैं। कुछ ही देर में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में दोपहर समाचार रिले किए जाएंगे। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल है, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: चार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगे। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में यह बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमरीका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
2: अमरीका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम

0: करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की एपिसोड संख्या 1309।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: और जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोता, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओ, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है। यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है, यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून है, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूं, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहां से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं, ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत

0: बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओ हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओ आज के शैक्षिक कार्यक्रम की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है। धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बाद

तल थे। घटा गहरी नहीं थी। धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनत के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर

चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ तुम बड़ी अच्छी आई, ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम देख हट के यहाँ आया करो।
0: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
1: हाँ बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
0: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई। उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
1: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ। अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना

0: करी।
1: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है। देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? मां के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
2: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
0: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है। दो दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: बोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया तो मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी, मैं मालामाल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। मालामाल किसे कहते हैं, क्या मुझे वो तुम्हारा मालामाल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का होगा।

0: ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
1: वो सोना क्या चीज होती है?
0: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
1: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
0: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं। वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है, तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह, तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूं कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला।

0: सेठ कहते रहे।
1: सच, तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
2: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
1: हाँ हाँ जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, बड़ी अच्छी बात है।
2: सेठ मुझे देर हो रही है।
1: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
2: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
1: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
3: जी मालिक।
0: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
1: हाथ से निकल गई।
0: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
4: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा। ना, ना, ना।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक न खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम की भाग संख्या 1309 सुन रहे थे। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलो हर्ट्ज पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर अर्थात 531 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, दिन के ठीक 3 बजे हैं। आज की ये पहली सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे दूसरी सभा में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 5 बजे हैं, हमारी दूसरी सभा अब आरंभ होती है। सभा

0: स्वागत है, आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम युवाणी। और जब युवाणी सुनते हैं और युवाओं से हम लोग बात नहीं करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो इसलिए एक युवा चैंपियन हमारे साथ है जो कि योगासना करते हैं, जो कि योगा करते हैं, बहुत एक्सपर्ट है, जिनका नाम है अंजलि बिश्नोई। तो आइए इनकी भेंटवार्ता सुनाते हैं जो कि ली है राहुल ने। तो आइए इनकी और राहुल की बातचीत सुनते हैं।
1: कार्यक्रम युवाणी में आपका आज फिर से स्वागत है। और प्रोग्राम युवाणी चल रहा है, हर बार कुछ नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ती हैं। आज फिर नई शख्सियत हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि बिश्नोई के बारे में अगर मैं बात करूं तो नेशनल असम प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है योगासना चैंपियनशिप में। 2025 बिहार खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है और एशियन टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल भी अपने नाम ये कर चुकी है। अंजलि बिश्नोई आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। अंजलि, मैं चाहूंगा आप सबसे पहले अपने बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा नाम अंजलि बिश्नोई है, मैं गांव बुद्ध नगर है मेरा, मैं जोधपुर से ही हूँ। मेरे पापा का नाम प्रकाश जी है।
1: अंजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी शुरुआत कब हुई, योगा कब शुरू हुआ, कैसे आपको लगा कि मुझे शुरू कर देना चाहिए?
2: सर, योगा मेरा भाई करता था नॉर्मली योगा, पापा उसको प्रैक्टिस करवाते थे बहुत ही लाइटली। और फिर पापा और मेरे नाना जी उसको बाहर हमारे मंदिर लेके गए थे, विष्णु समाज का मंदिर है जाजीवाल। तो उधर गुरु जी को बताए थे ऋतिक ने 2-3 आसन, तो गुरु जी ने योगा जुड़ने का बोला था, उन्होंने कोई जगह बताई थी, उधर योगा ज्वाइन किया।
1: इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है आपको योग करने की, मतलब
2: भाई से
1: भाई से क्या
2: जी,
1: करते हैं भाई आपके, उनके बारे में
2: भाई
1: बताएंगे?
2: योगा करता है खुद, उसको देख के ऐसा लगा कि हाँ मैं भी उधर जाऊं। पहले तो मैंने ऐसे ही खेल के, मतलब ऐसे ही खेलना है उसे, बच्चों से मिलना उधर, फिर धीरे धीरे योगा से जुड़ गए उधर ही।
1: तो आपकी एजुकेशन लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, क्या करती हैं अब योगासन के साथ साथ?
2: योगासन के साथ साथ अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ।
1: अच्छा, मतलब क्या सब्जेक्ट लिया है आपने?
2: मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से हूँ, आर्ट्स है मेरी।
1: अच्छा ठीक है, बातचीत में आगे बढ़ेंगे। मैं जानना चाहूंगा आपकी अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि आपको क्या लगी है?
2: मेरे को मेरा एशियन का मेडल, मैंने एशियन में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं।
1: ओहो, और उसके अलावा क्या क्या, कहाँ कहाँ पार्टिसिपेट किया आपने?
2: असम में हुआ था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया था आर्टिस्टिक पेयर में, जिसमें मेरा सिल्वर लगा था मेरे पेयर पार्टनर का। फिर हमने बिहार हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसमें मेरा ब्रॉन्ज लगा था और सबसे बड़ा मेडल था मेरा एशियन में 2 गोल्ड मेडल जीते।
1: पहली बार कहाँ पार्टिसिपेट किया था आपने?
2: डिस्ट्रिक्ट हुआ था जोधपुर, डिस्ट्रिक्ट में पार्टिसिपेट किया था
1: तो
2: मैं।
1: सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आपको कहाँ लगा?
2: सबसे अच्छा एक्सपीरियंस तो मेरे को एशियन का लगा था उधर।
1: क्या फर्क
2: फिर
1: था, आपने डिस्ट्रिक्ट भी खेला, आपने असम में भी जाके खेले, आपने बिहार में खेले, इंडिया में पार्टिसिपेट किया, फिर एशिया में आपने गोल्ड मेडल जीता, तो क्या वहाँ की अलग बात थी?
2: एशियन में ये था कि बाहर के जो स्टेट के बच्चे थे वो भी आए थे, हम भी थे, तो उनके आसन देखना, उनकी प्रैक्टिस देखना कि वो कैसे कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, हमारे और उन्होंने में क्या फर्क है, जो हमारे कुछ मेडल भी चूक जाते हैं कि हम वापस आ जाते हैं, तो उनका मेडल देखना, उनके मेडल लगे हमें आ रहा क्यों नहीं लगा, तो उस प्रैक्टिस में एशियन में पता चला हाँ ये हमारे यहाँ पे क्रमी थी और वो ये प्रैक्टिस करते, हम ये नहीं करते।
1: अब तक ऐसी कोई मेमोरी आपको याद आ रही है कि यार ये तो गजब का किस्सा हो गया?
2: जो हमने एशियन में किया था, मेरी और मेरी फ्रेंड थी जोधपुर की, तो उसने और हमने लेट हो गया था, हम सो गए थे दिन में, तो फिर हमारी क्लास थी, सेशन था, तो सेशन में जाना था और हमें लेट ज्यादा हो गया, तो उधर से हम छिप गए थे, फिजियो क्लास में हम छिप गए थे, उधर से एकदम अचानक सर आ गए। अरे सर कहाँ से आ गए अभी? तो सर बोला तुम यहाँ क्या कर, सर हमारा कुछ दर्द कर रहा है तो हम फिजियो की क्लास लेने गए, अभी तो क्लास चल रही है सर, बस 2 मिनट में जा रहे हैं। सर को उधर भेजा तो आगे देखा तो मिश्रा सर हमारी क्लास ले रहे हैं, अभी उधर डर लगे उधर जाए तो सर बोले लेट क्यों आए, तो हमने उस क्लास से बंक मारा, बड़े छिपके गए थे।
1: तो बंक मारने वाला भी, मतलब आपने वो सिलसिला वहां भी कर लिया है,
2: कर
1: मतलब
2: लिया।
1: कि आप योग से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो किस तरह से जुड़ सकता है?
2: टीवी वगैरह में देखते हैं, रामदेव बाबा को देखते हैं टीवी पे, या सोशल मीडिया, आज सोशल मीडिया पे योगा वगैरह सब वायरल है, अभी योगा योगासन बन गया है।
1: मैं आपसे जानना चाहूंगा पढ़ाई और योग के बीच का बैलेंस आप किस तरह से देखते हैं?
2: पढ़ाई पढ़ाई दिन में हो जाती है, प्रैक्टिस सुबह शाम अपना टाइम निकालना पड़ता है, तो सुबह और शाम प्रैक्टिस करते हैं और दिन में पढ़ाई वगैरह अदर काम करते हैं।
1: फैमिली और कोच का सपोर्ट किस तरह से देखते हैं आप अपने इस लाइफ में, इस पूरी जर्नी में?
2: सर कोच का तो हमारा बहुत ज्यादा सपोर्ट है कि इवेंट आया बच्चों आओ प्रैक्टिस करते हैं सुबह शाम, जब प्रैक्टिस करो तो बड़ा जोर आता है, हाँ सर क्यों बुला रहे, बस अभी सोना है दिन में, तो सर का वो ऐसे डर रहता है, हाँ सर ने बोला अब जाना भी है, तो सर क्लास लेते हैं, सर स्टॉप वॉच रख के सर पास में खड़े रहते हैं, जब प्रैक्टिस करते सर का बहुत मूड एकदम सीरियस होता है कि अभी हमें ये खा ही जाएंगे, बट सर जब हम प्रैक्टिस करवा के रहते हैं तो हाँ उस टाइम शाबाशी मिलती है, हाँ ये तूने एक चीज सही की है, ये चीज तूने गलत की है, अच्छा लगता
1: है। कुछ फनी चीजें भी होती है प्रैक्टिस के दौरान क्या, सिर्फ प्रैक्टिस ही होती है?
2: नहीं, फनी चीजें होती है। हम आसन में, कोई बंदा आसन कर रहा है तो उसको नीचे गिराना है, कैसे गिरा है, उसको डराना है कि वो क्या कर रहा है, ऐसा रहता है। उसको गिराने का रहता है कि उसको सर उधर देख रहे, इसको गिरा देते हैं।
1: ओके ओके, कोच

0: से आपसे मिली अब तक की सबसे बड़ी सीख आपको क्या लगती है?
1: सर हमें जब प्रैक्टिस कर रहा था अपने आप को घिसो, जितना घिसोगे उतना मेडल आएगा। अब सोच लो अभी इधर घसना है उधर परफॉर्मेंस देनी है।
0: आपको क्या लगता है युवाओं के लिए योग क्यों जरूरी है?
1: युवाओं के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने इंटरेस्ट होता है कि हाँ हम ये चीज करें उस चीज के।
0: और स्वास्थ्य के साथ साथ अब तो जो कि आप इस खेल में भी आगे जा सकते हैं, अपने आप को पार्टिसिपेट करवा सकते हैं, योगासना के गेम्स में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य बनाने के साथ साथ आप अच्छे लेवल पर भी अपने आप को परफॉर्म करता हुआ देख सकते हैं। ओके अंजलि, बातचीत में आगे बढ़ेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपको बताना भी चाहूंगा कि भाई योग ऐसा गेम है ना जहाँ हमें कुछ ज्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती, और भी कई सारे ऐसे खेल हैं जहाँ हमें महंगे महंगे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं,
1: जी
0: उनका इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सीखना भी पड़ता है, लेकिन योग एक ऐसा खेल है ना जहाँ आपको सिर्फ अपना माइंडसेट एकाग्र करना है और इस खेल में अपने आपको पूरी तरह से झोंकना है बिना किसी इक्विपमेंट के, सिर्फ अपने दिमाग लगाना है, अपने आपको एकाग्रता से इस खेल में अपने आपको बनाए रखना है, ठीक है? तो ऐसे में जो लोग गांव से हैं, दूर दराज से, मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए योग कितना जरूरी है, वो कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते
1: उनके
0: हैं?
1: लिए योग तो एक स्वास्थ्य के लिए चीज़ हो गई कि वो योगा करे तो स्वस्थ भी रह सकते हैं। और योगा के लिए कुछ भारी किट नहीं चाहिए होता है, अपनी कॉस्ट्यूम होते हैं उस कॉस्ट्यूम, और हम घर पे भी कर सकते हैं, दरी बिछाई योगा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि योगा बूढ़े लोग ही करते हैं, योगा जवान लोग, ये योगासन से योगा योगासन बन गया है।
0: और योगासन आजकल आप जो है वो सोशल मीडिया के जरिए, टीवी के जरिए, कई सारे आपके पास साधन है, उन्हें देख कर भी आप सीख सकते हैं, है
1: जी
0: ना?
1: सर,
0: आपने योग कहाँ से सीखा? सबसे पहला आपने योग सीखना कहाँ से शुरू किया था?
1: योगा सीखना मैंने यसदीप सर और गजराज सर से सीखा है, उन्होंने हमें प्रेरित किया है।
0: अच्छा, उन्होंने प्रेरित किया
1: जी
0: आपको, ठीक है। बातचीत में आगे बढ़ेंगे, जाते जाते एक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलने वाले हैं, उसमें आपको इंस्टेंट जवाब देना है, ठीक है?
1: जी
0: तैयार हैं आप
1: सर,
0: उसके लिए?
1: जी सर,
0: ओके, तो तैयार है। रैपिड फायर के लिए आपका पहला सवाल, चाय या फिर कॉफी?
1: दोनों ही नहीं,
0: दोनों ही नहीं। सुबह जल्दी उठना है या रात को देर तक जागना?
1: सुबह जल्दी उठना।
0: ओके, सूर्य नमस्कार या प्राणायाम?
1: सूर्य नमस्कार।
0: मेडल या फिर ट्रॉफी?
1: मेडल।
0: योग मैट का पसंदीदा रंग आपका?
1: रेड।
0: पसंदीदा योगासन?
1: वामदेव त्रिपुरासन।
0: सबसे कठिन योगासन?
1: डिम्बासन।
0: पसंदीदा खिलाड़ी?
1: ऋतिक
0: ओके भाई, कोई
1: जी, उसके आसन
0: क्या
1: देख के ऐसा लगता है कि हाँ मेरे को भी ऐसा आसन करना है, तो
0: बात,
1: उसको
0: वो
1: देख के
0: मतलब
1: होता
0: पूरा
1: है,
0: फ्लेक्सिबल होगा वो, तो पूरा एकदम सब
1: एकदम
0: कुछ कर
1: रबड़
0: लेता है,
1: जैसा
0: रबड़ जैसा। आपके मोबाइल या फिर किताब?
1: किताब
0: किताब, ठीक है। छुट्टियां कहाँ, पहाड़ों में बिताना पसंद करेंगे,
1: दोनों
0: समुद्र के
1: जगह ही नहीं,
0: किनारे,
1: दोनों जगह ही नहीं,
0: घर पे?
1: नहीं गाँव।
0: अच्छा, अपने गांव में। ओह क्या बात है, योग को एक शब्द में किस तरह से डिफाइन करोगे आप,
1: करो योग, रहो निरोग।
0: क्या बात है। अगर योग में चैंपियन नहीं होते, इस फील्ड में नहीं होते, तो कहाँ जाना पसंद करते हैं?
1: पढ़ाई।
0: और सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति आपको कौन लगता है?
1: पापा।
0: अपने कोच के लिए कोई एक शब्द?
1: कुछ भैया।
0: भैया। आप अपनी सबसे बड़ी ताकत किसे मानते हैं आप?
1: मम्मी पापा।
0: अरे वाह। और नेक्स्ट टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है?
1: वर्ल्ड योगा में मेडल लेके आना।
0: क्या बात, अंजलि बिश्नोई हमारे साथ बनी हुई थी प्रोग्राम युवाणी में, कई सारे मेडल इन्होंने अपने नाम करे हैं, जिसमें एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करा है। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।
1: थैंक यू सर।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता अंजलि बिश्नोई की राहुल के साथ।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में। जैसा कि आप सभी को पता है कि युववाणी चल रहा है, और अगर युववाणी चल रहा है तो इसके गुरुवार में कुछ ना कुछ सरप्राइज जो है हम जरूर लेके आएंगे। तो अगर आज के सरप्राइज की बात करें तो वो है एक और कहानी। जी हाँ दोस्तों, हम कहानी लेकर के आए हैं जिसका शीर्षक है रुकना भी जरूरी है, जिसका वाचन किया है रोहित और आयुषी ने। तो चलिए फिर सुनते हैं कि इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है।
4: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं युवा पसंद कार्यक्रम जिसका नाम है युवाणी, और थर्सडे यानी गुरुवार स्पेशल में कहानी एक हम आप सभी के लिए लेकर आते हैं। और इसी के साथ एक और कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है रुकना भी जरूरी है। शहर के एक कोने में एक छोटा सा पार्क था। लोग रोज वहां से गुजरते थे पर रुकता कोई नहीं था।
3: उसी पार्क में एक बूढ़ा माली रहता था। वो रोज पौधों को सींचता, घंटों मिट्टी से बात करता।
4: लोग कहते, इतनी मेहनत किस लिए, कल ये पौधे सूख भी सकते हैं।
3: माली बस मुस्कुरा देता। वो जानता था हर बीज को वक्त चाहिए।
4: एक दिन वहाँ एक युवक आया भागता हुआ, परेशान थका हुआ।
3: वो बोला, जिंदगी दौड़ बन गई है पर मंजिल नजर नहीं आती।
4: माली ने उसे एक बेंच पर बैठाया, कहा पहले रुकना सीखो।
3: युवक चौंका, उसने कहा रुकूंगा तो पीछे रह जाऊंगा।
4: माली ने जमीन दिखाई, कहा बीज रुकता है तभी तो पेड़ बनता है।
3: युवक रोज आने लगा, पहले 5 मिनट फिर आधा घंटा।
4: उसने देखना शुरू किया, धीरे बढ़ते पौधे, शांत हवा और खुद की बेचैनी।
3: कुछ हफ्तों में उसकी आंखों का बोझ हल्का होने लगा।
4: काम में गलती कम हुई, सोच साफ हुई।
3: एक दिन युवक बोला, अब समझ आया।

0: रुकना हार नहीं है।
1: माली मुस्कुराया, कहा, जो सही वक्त पर रुकता है वही सही दिशा में चलता है।
0: कई साल बाद पार्क हरा भरा हो गया।
1: लोग अब वहाँ रुकते थे, सांस लेते थे, मुस्कुराते थे।
0: माली नहीं रहा पर उसकी सीख हर पेड़ में थी
1: कि जिंदगी में भागना जरूरी है पर कभी कभी रुकना उससे भी ज्यादा। श्रोताओं, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो हर पल दौड़ता है वो खुद को खो देता है
0: और जो कभी कभी रुकता है वो खुद को पा लेता है।

0: दोस्तों, अभी अभी आपने कहानी सुनी जिसका शीर्षक था रुकना भी जरूरी है, जिसको सुनाया था हम दोनों ने, यानी कि मैं आपकी दोस्त आयुषी और मेरे साथ है।
1: बिल्कुल, मैं था आपके साथ, आपका रेडियो रागिनी रोहित। तो और इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, और जितने भी युवा साथी हमें सुन रहे हैं, अगर वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स ने कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन CRE5 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके अनुसार देश भर में विभिन्न एम्स संस्थानों और केंद्र सरकार के मेडिकल संस्थानों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के 1484 पदों पर भर्ती की जाएगी। उम्मीदवार एम्स की ऑफिशियल वेबसाइट aimsexams.ac.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा CBT परीक्षा का आयोजन 25 से 27 जुलाई के बीच किया जा सकता है। नंबर ऑफ पोस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, 1484। आवेदन जो है वो 13 जून को ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, जो कि 30 जून तक लास्ट डेट रहेगी। अगर आप भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वेबसाइट फिर से एक बार बता देता हूँ, aimsexams.ac.in आपकी वेबसाइट रहेगी। यहाँ पर जाकर के आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं और इसकी सारी डिटेल्स भी आपको यहीं पर मिल जाएगी।

0: इसी के साथ समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज का कार्यक्रम बस इतना ही रहेगा। आपके साथ था मैं, यानी आपका लीडर आगे रोहित, और आज मेरे साथ थी।
1: और मैं हूँ आयुषी। तो दोस्तों, आज की ये जो हमारी जितनी भी बातें हैं, ये बस यहीं तक। अब आगे हम बढ़ते हैं।
0: आज के इस प्रोग्राम की परिकल्पना करी है मनीष कुमार सोलंकी ने और संयोजन किया है राजेश लामरूड ने। इसी के साथ दीजिए हम दोनों को इजाजत। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे युववाणी। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं धीनारी बाता। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: 30 मिनट पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीनारी बाता।
2: आज मुन्ना उतार किया बैठे हो
3: काई करू दाबू बेटा भैंस पूरा दूध भी कौन दियो और विरोध जीसरो भी कौन
2: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया काकी साहब की कार्यक्रम सुनिए पशुपालन से जुड़ी और सभी समस्याओं का समाधान।
4: इस कार्यक्रम की प्रायोजक है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।
5: धीनारी बाता धीनारी बाता कार्यक्रम सुनन वाला सगला पशुपालक भाई ने हरखू भाई और
6: बंशी भाई रा
5: मोकड़ा मोकड़ा
6: राम राम
5: राम राम भाई बंशी भाई राम राम
6: राम राम हरखू भाई राम राम।
5: देखो सिंजा पड़ी री बेला है और

0: हाथ में लेवड़ और गमछो कांधे पर टांगेड़ और लगे कठी घूम रहे हो।
1: आ थे तो अरखू भाई सारी बात ना जानो हो।
0: जानो क्यों माथे में पसीनो टपक रही है, पूछ रिया हो बार बार है, कई बात है।
1: देखो सा सुबेरी बेड़ा और संजेरी बेड़ा,
0: हाँ
1: यानी बी टेमरा आदमी ने थोड़ा टहलना चाहिए ताकि उन्हें सुखी है कि शरीर जो निरोग रहे।
0: बिल्कुल सा, देखो जे सुबह की बेड़ा है तो भी आपने घूमना चाहिए और साथ साथ जिका भी आपा हड़का फुलका व्यायाम है योग है वो भी आपा कर लेवा तो शरीर ने अपर निरोगो रहे।
1: इन वास्तरी क्या करे कि भाई जिको करे योग,
0: हाँ
1: उनरो शरीर रहे निरोग।
0: निरोग बिल्कुल सा, देखो सुबह उठते ही साथे कहीं है आपा देखो तैयार हो जावा और अनुलोम विलोम बिल्कुल साधारण सी प्रक्रिया है, अगर बिना भी आपा कर लेवानी तो भी आप निरोग रहे हो सा। और आप अगर घर से बाहर निकल दो तीन किलोमीटर घूम ले हो तो और ही सोने में सुहागेरी बात है सा।
1: भाई जितो करो नहीं अपना शरीर ने दूरो,
0: हाँ
1: भाई काम शु करो एक तो
0: हाँ।
1: और एक अपना अगर योग रे माध्यम से बो जो दूरो को नहीं रहना हो वो उल्टे रो जो कहीं है कि शरीर ने सोरो रखने रो योग।
0: तो देखो आपने जीवन रे माने एक आदत डालनी है कि आपने सुबह और सिंजारी बेड़ा घूमने रो जो बखत है वो निकालना है और हल्का फुल्का जिका व्यायाम है वे करना है। जे आप कोई रोग विशेष से जुड़ेड़ा हो तो आप जिका भी विशेषज्ञ है सलाह ले पर आपने योग करना है।
1: हाँ, कुल मिलार बात आई है कि शरीर जो है नी उन्होंने कोई न कोई काम रमाने लगाएड़ो रखो।
0: हाँ देखो शरीर से पसीनो निकलना चाहिए, पसीने में मेहनत छुपी है
1: और मेहनत से ही देखो सा मिले धन।
0: बिल्कुल सा, तो मुंडा बा बताओ योग रे साथ है कि आज आप चर्चा किन विषय पर कर सा?
1: लोग कागज तो घनकरा लिखे है, कोई लिखे कि भाई और रानी खेत रोग कहीं हुए उन बाबत जानकारी दो और एक फाउल पॉक्स चेचक रोग
0: देखो बर्ड फ्लू रे बारे में आयो है।
1: अच्छा
0: राम जी लिखी है मुर्गिया में हुन वाला रोग,
1: मुर्गिया रा प्रमुख रोग अरे रोक थाम रा उपाय।
0: वाह वाह ठीक रस्तो बतायो आज विशेषज्ञ जी का पता नहीं। हाँ। नाम आपने बता दू चौपाल में पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से पधारे हैं सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी आप चौपाल में घनो घनो स्वागत है, आपने में करा
1: राम राम सा।
2: राम राम अरकू भाई, राम राम बंसी भाई।
1: देखो सा आपा कर सा डॉक्टर साहब सु प्रसन्न और डॉक्टर साहब जब जवाब देसी नी तना अपना जगह पशुपालक भाई नी बे होसी प्रसन्न।
0: बिल्कुल
1: आमार पूछू सा तो सेव पहली डॉक्टर साहब मारा पशुपालका ने आप आ बताओ कि मुर्गिया माए होवन वाला प्रमुख रोग है वे किसे किसे होया करे?
2: हाँ बंसी भाई, प्रमुख रोग अपने मुर्गिया में मेनली तीन कारक हुआ करे, चाहे मुर्गिया हो पशु हो पक्षी हो, क्या तो वायरस हुए क्या बैक्टीरिया हुए क्या प्रोटोजोआ पेरासाइट हुए
1: जी।
2: तो वायरस होने वाली मेन पहले मैं बताऊं आपने बीमारियां, सब बड़ी बीमारी बर्ड फ्लू जो पूरा वर्ल्ड पूरो राजस्थान ही नहीं भारत ही नहीं पूरा विश्व त्रसित है। बर्ड फ्लू ला रहे दो चार बार हुए तो लाखों लाखों की संख्या में अपने मुर्गियां मारनी पड़ी ताकि मनुष्य में वो रोग नहीं पहुंचे
1: जी।
2: दूसरो रानी खेत डिजीज है वो भी बहुत खतरनाक छूतरी बीमार। तीसरो फाउल पॉक्स है। चौथो इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस है जो अपने बार ला रहे कोरोना बीमारी हुई सेम बिशर बारी बा बीमारी है बिना इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस कहवे बा मुर्गिया में हो जावे। चौथी मर्क्स डिजीज अपने कैंसर हुए मनुष्य आदमिया में बस सेम ट्यूमर हो जावे मर्क्स डिजीज में। पांचवी गंबोरो डिजीज है, लीची रोग है, ये सब वायरस होने वाला है। दूसरा बैक्टीरिया होने वाला रोग है, इन्फेक्शियस कोराइजा है, फाउल कोलेरा है जो हुए आपने जी हाँ फाउल कोलेरा हुआ है, पुलोरम डिजीज है, ई कोलाई है, फाउल टाइफाइड है अपने टाइफाइड हुआ जी यहाँ टाइफाइड हुआ है, ये सब जीवाणुओं बैक्टीरिया होने वाला बीमारियां है
1: जी।
2: तीसरी परजीवों पेरासाइट जो चीचड़ है, टिक है, माइट है, कोक्सीडियोसिस है, एस्परजिलोसिस है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज है, ये सब प्रोटोजोआ या पेरासाइटों होने वाली ये प्रमुख बीमारियां मुर्गिया में हुए।
0: वाह सर बहुत ही बढ़िया जानकारी दी आप, घनकरा रोग बताए पर आज आप कुछ मुख्य मुख्य रोग पर चर्चा कर सा। तो सेहूं पहला डॉक्टर साहब मैं आपसे वो जानना चाहूंगा कि रानी खेत रोग रा कारण लक्षण रोकथाम रा उपाय कहीं वे इन विषय पर थोड़ी जानकारी दो सा।
2: रानी खेत डिजीज अगर रानी खेत नाम ही वास्ते पड़े हो कि रानी खेत एक जगह है उत्तराखंड में, तो सब पहले बठे भारत में डिजीज आई आ बीमारी आई
1: जीव
2: इरो नाम रानी खेत भी जगह रे हिसाब रानी खेत डिजीज नाम पड़ियो। दूसरो नाम ये बीमारी रो न्यू कैसल डिजीज भी कहवा, न्यू कैसल एक जगह है इंग्लैंड में।
1: अच्छा।
2: तो भारत में रानी खेत में आई लेकिन सब पहले महामारी रे रूप बठे न्यू कैसल में आई, इन्हें दूसरो नाम न्यू कैसल डिजीज भी मेरे हिसाब आप राखोड़ो है। तो इमें कहीं है कि सब

0: मर्री मुर्गिया में हो सके, छोटा चूजा हूं लेर बूढ़ी भी मुर्गी तक आ बीमारी हो सके, टर्की में भी बीत रहा हूं समान रूप हुए। इरो कारक के एक मिक्सो वायरस हुआ करे भी वायरस री वजह आ हुए इमें इरा मेन लक्षण आ चार तरह री हुए। पहलो विरुलेंट फार्म है, दूसरो मिसोजेनिक फार्म है, तीसरो लेंटोजेनिक फार्म है और चौथो एसिम्टोमेटिक। तो पहलो विरुलेंट फार्म इन एशियन टाइप रानीखेत डिजीज भी कहवे, आ बहुत खतरनाक है, इमें 100% 100% मृत्यु निश्चित है, इमें मरे ही मरे मुर्गी, और आ 3-4 दिन तक रहे और बीर बाद में कदे कदे एक ही दिन में सगली मुर्गियां मर जावे। इमें लक्षण तेज बुखार हुए और मुर्गियां ने सांस लेने में बड़ी तकलीफ हुए, मुंह खोलर मुर्गियां भी में सांस लेने की कोशिश करे और अंडा उत्पादन सब भी में कम हो जावे। दूसरी है मिसोजेनिक फार्म, भी ने अमेरिकन टाइप किया करे, भी में मृत्यु थोड़ी कम हुए, कम खतरनाक है, 5-20% तक ही मृत्यु हुए, सांस लेने में कठिनाई हुए, हरिया रंगरा भी में दस्त हुए तो, और अंडा उत्पादन में कमी तो बात ठीक हो सके, 10-20% तक भी मृत्यु हुए, 80% मुर्गियां भी में ठीक हो जावे। तीसरी है लेंटोजेनिक, इनमें मृत्यु दर बहुत कम है, वो श्वास लेने में थोड़ी तकलीफ हुए लेकिन अंडा उत्पादन में भी कमी हुए लेकिन वह ठीक हो जावे। चौथी एसिम्टोमेटिक भी, लक्षण दिखे कौन नहीं,
1: अच्छा
0: पर बड़ी मजेदार बात है कि इनमें लक्षण कौन दिखे पर मुर्गी उल्टी चलन लाग जावे,
1: अच्छा
0: तो भी अपन ठा पड़े के ओ रानी खेतरो लेंटोजेनिक है,
1: रोग है
0: एसिम्टोमेटिक, सिम्टम कौन आ रहा है, इनमें भी में खांसी आवे उल्टी आवे पर मुर्गी उल्टी चालन लाग जावे तो आपने ठा पड़ जावे आ बीमारी, कदे कदे बार टांगे ने बीच में माथो देर भी बैठ जावे, तो यूं आपने ठा पड़े कि यह एसिम्टोमेटिक रानीखेत डिजीज है। तो ई रोग रो कोई उपचार नहीं है, जो मेन जो विरुलेंट फार्म में बतायो एशियन टाइप बीरो कोई उपचार नहीं है, बाकी तीनों फार्म रो थोड़ो उपचार है, ठीक हो जावे। वैक्सीनेशन ये में जरूर कराना चाहिए, ब्रॉयलर और लेयर में तो 7वें दिन पर जन्मे जीव, 7वें दिन पर, 28वें दिन पर और 10 सप्ताह पर,
1: अच्छा
0: 3 बार वैक्सीनेशन कराना जरूरी है, और ब्रॉयलर में सिर्फ 7 दिन पर वैक्सीन करा दो, वो क्यों काम चल जाए।
1: तो डॉक्टर साहब मैं उम्मीद करा कि भाई आपने जी की जानकारी आप दी उनासु आपने जगह पशुपालक भाई है लाभ उठा सी। अब बात करा डॉक्टर साहब एक रोग आप बतायो बर्ड फ्लू, जिके सु देखो साहब भारत ही नहीं पूरा जो विश्व है वो भी कहीं है कि इनसु प्रभावित हुई और परेशान हुई, आप बताओ कि इन बर्ड फ्लू रोग रा लक्षण कारण और उनका रोकथाम रा कई उपाय।
0: जी बर्ड फ्लू भी एक वायरस होने वाली बीमारी है, इन्फ्लुएंजा वायरस, आपने कोविड में भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही हो, इमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस है, भी वो बर्ड फ्लू बीमारी फैले, अभी बहुत खतरनाक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और इमें भी जी रानी खेतों बताई 100% मृत्यु निश्चित, इरो कोई उपचार नहीं है, इमें मुर्गिया ने मार खड्डे में या कोई सुरक्षित रूप में निस्तारित करनी पड़े, और रोग मुर्गिया में और टर्की में मुख्य रूप हुए। ई रोग रा लक्षण है कि अचानक ही खूब संख्या में एक ही दिन में एक ही दम ही मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, अपने समझ नहीं आवा यार एक ही दम में मुर्गियां क्या मरी, पहले कोई लक्षण दिखे को नहीं, एक ही दम में मुर्गियां मरनी शुरू हो जावे, पक्षी सुस्त और बिल्कुल खानो पीनो बंद करे और मरना शुरू, तो आ स्थिति फार्म में हो जावे। बर्ड फ्लू रो पक्षी में कहीं सूजन भी आ जावे, जुकाम हो जावे, नाक आंख आमू सब स्त्राव शुरू हो जावे, तो ये सब लक्षण इमो हो जावे, इरो उपचार को नहीं बिल्कुल भी और मरना शुरू हो जावे, तो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वैक्सीनेशन इरो उपचार है, वैक्सीनेशन आपने 7-10 दिन में करवाना चाहिए, डॉक्टरी सलाह लेर
2: बिल्कुल नुकसान वैसा। और अब डॉक्टर साहब मैं आपसे जानना चाहूँ कि गंबोरो रोग कई है और इरा उपचार और बचाव किया कर सका।
0: गंबोरो रोग इरे साइंटिस्ट है एक, बारो नाम हो जूलियन गंबोरो, वे ई रोग ने शुरू शुरू में स्टार्टिंग में खोज करी, तो बारे नाम वो गंबोरो रोग नाम पड़ियो, तो मैं साइंटिस्ट री वजह ई बीमारी रो नाम गंबोरो। अब भयंकर छूतदार बीमारी है, एक मुर्गी हूँ दूसरी मुर्गी में, दूसरी हूँ तीसरी में, और चूजा में ज्यादा हुए छोटी उम्र में, सामने 2 सप्ताह लेर 15 सप्ताह री उम्र में वो रोग हुए, और 3 सप्ताह लेर 7वें सप्ताह में लक्षण बहुत तेजी हुआ हुआ भी में, 3-6 सप्ताह की आयु में इमें एकदम रोग लक्षण जो हुए वे तेजियों प्रकट हुआ, इमें पक्षी सुस्त हो जावे, भूख री कमी हो जाए, भूख प्यास कम लागे, मारो उत्पादन कम हो जाए, पानी री कमी हो जावे शरीर में, ऐसा लक्षण पंख इमें गंबोरो में पंख भी रहा अव्यवस्थित हो जावे थोड़ा,
1: अच्छा
0: पंख उड़ने में चालने में भी रहे बड़ी तकलीफ हुए, पगा में लकवा जिसी स्थिति भी आ जावे, तो है आप पशु चिकित्सक ने जाओ या राजूवास आपने नंबर है टोल फ्री बैठे बात करो इरो इलाज है पोल्ट्री फार्म भी राजूवास रो है बैठे भी आप संपर्क

0: कर सके किसान भाई, तो इरो इलाज है, वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है। चार वैक्सीन इरे वास्ते है, पहली माइल्ड वैक्सीन है, कम लक्षण आवे तो माइल्ड, मतलब माइल्ड वैक्सीन लागू हुआ है, इंटरमीडिएट वैक्सीन हुआ है, और इरे अलावा इन्वेजिव इंटरवेसिव हुआ है, लेयर और ब्रॉयलर के लिए इन्वेजिव इंटरमीडिएट वैक्सीन, और चौथी हुआ हॉट स्ट्रेन वैक्सीन, जो अगर एरिया में आपने प्रोन हुए, कई एरिया ये बीमारी के वास्ते प्रोन हुए, तो भी मैं हॉट स्ट्रेन वैक्सीन जरूरी हुआ, ये चार तरह की वैक्सीन कर ईरो बचाव कर सका।
1: जी हाँ डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया तरीके से समझावे नी, तो सवाल भी आपने बढ़िया बढ़िया दिमाग रे मायने आ जावे। तो अगलो सवाल है डॉक्टर साहब आपसे, हो है कि फाउल पॉक्स या चेचक रोग रा लक्षण कहीं होया करे, और इन बाबत टीकाकरण की कई भूमिका हो, इन बाबत भी जानकारी दो सा।
0: चेचक आप नाम बतायो, पॉक्स, पॉक्स वायरस हूँ, वायरस नाम में ही आ रही होगी, पॉक्स तो पॉक्स वायरस है, चेचक जी में छोटी छोटी पुणसियां, जो मनुष्य में चेचक हुआ तो फुणसियां हो जाए, जो इनमें मुर्गी में छोटी छोटी फुणसियां हो जावे जगह जगह पूरे शरीर पर, कलंगी पर, गलकंबल पर, आखरी पुतलिया माथे और सिर माथे फुणसियां हो जावे, तो वही मेन लक्षण है कि फुणसियां अगर आपने दिखे तो आप समझ जाओगे वो फाउल पॉक्स बीमारी है। इनमें संपर्क भी, एक मुर्गी दूसरे मुर्गी में संपर्क में आवे तो भी वो एक दूसरे में फैले, मच्छर या पेरासाइट, बारे परजीवी आरी वजह भी आ बीमारी हो जावे। अब तीन तरह री हुए, चर्म रूप मतलब चमड़ी में फैलना, अच्छा। दूसरी हुए मुख रूप, और तीसरी हुए आंखियां रूप। चर्म रूप में कहीं हुए कि इमें कलंगी, कलंगी माथे, चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसियां, चेचकरी, चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर, गुदा पर भी हो जावे, तो इमें हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा, एक दो दिन में पीला रंग में बदल जावे, भी आपकी पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुंह अंदर झिल्ली अंदर गड़ा तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुआ इरो चेचकरो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आंख रूप, इमें आंखें।

0: माथे, चेहरे माथे और गर्दन माथे ए फुंसियां, चेचकरी, चेचकरा दाग हो जावे, गल कंबल पर, गुदा पर भी हो जावे। तो यहां में हल्का भूरा रंगरा दाना नजर आवे, तो बन देख रहे धीरे धीरे पीला रंगरा, एक दो दिन में पीला रंग में बदल जावे, भी वहां पर पहचान हो जावे। दूसरो वह मुख रूप, इमें मुंह अंदर झिल्ली अंदर गड़ा तक छला और दाना हो जावे, तो वो मुख रूप हुए इरो चेचकरो फाउल पॉक्स रो। तीसरो वह आंख रूप, इमें आंख्याउर पलकाउर स्त्राव शुरू हो जावे, सफेद मवाद भी कई बार निकलन लाग जावे।
1: अच्छा,
0: तो वो इरो तीसरो रूप है आंख रूप। ओवरऑल अंडा उत्पादन तीनों ही रूपों में अंडा उत्पादन में कमी आ जावे, आहार प्रति रुचि पक्षीरी कौन रहे, ताप टेम्परेचर बिरो बढ़ जा, बुखार टाइप हो जा और उग्र रूप हो जावे, तो बस पक्षी मरना भी शुरू हो जावे। इमें भी रोग रो बचाव उपाय है, ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीनेशन।
1: अच्छा।
0: बीमारी होने पहले वैक्सीनेशन आपने करना होना चाहिए। 6-8 सप्ताह उम्र में इरो वैक्सीन लगे। अच्छा। वो डॉक्टर साहब संपर्क कर और वैक्सीन लगवानी चाहिए।
1: बिल्कुल साहब, बहुत ही बढ़िया जानकारी दी। और अब जो बखत है बंसी भाई, वो है गीतड़ ले रो।
2: बिल्कुल अरकू भाई,
1: सुना दू
2: एकदम साहब।
1: आप से सुनो भैया, वो एक मीठो मीठो सो गीतड़ लो।

0: तो भैया बार आप सुनियो भी एक मीठो मीठो सो गीत रड़ लो।
1: मैं प्रोफेसर राजेश कुमार धुड़िया, निदेशक प्रसार शिक्षा, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर, आप सभी किसानों व पशुपालक भाइयों से निवेदन करता हूं कि राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर द्वारा प्रायोजित धीणेरी बाता कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी केंद्रों से प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 से 6 बजे तक प्रसारित किया जाता है। इस कार्यक्रम के द्वारा पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान के विशेषज्ञों के द्वारा पशुपालन के क्षेत्र में नवीन जानकारी, नवीन तकनीकें आप तक पहुंचाई जाती है। इसे सुनें, इसका लाभ उठाएं और अपने पशुधन का उत्पादन बढ़ाएं।
0: इन बेला आपसे सुन रहा हो आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति धीणेरी बातें। और आज चौपाल में जानकारी देवन सर पधारिया है राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़। और आज आप बातचीत करिया मुर्गिया रा प्रमुख रोग रोकथामरा उपाय विषय पर।
2: डॉक्टर साहब क्या करे कि भाई जीवारी और पशुआरी सुरक्षा बहुत ही जरूरी होया करे और मैं चाहे किण भी रूप बारे मायने होया करे। बात करा जैव सुरक्षा री तो मुर्गिया माए जैव सुरक्षा रो काई महत्व है, इन बाबत आप जानकारी दे सर।
3: बायो सिक्योरिटी या जैव सुरक्षा बहुत जरूरी है। ई में आप सब पक्षा रो स्वच्छता रो विशेष ध्यान रखना पड़े, नहीं तो कई तरह रा इन्फेक्शन चूहा अपने पोल्ट्री फार्म में नहीं घुसे, इसका भी विशेष रूप भी आपने विशेष रूप ध्यान रखना पड़ी। कोई तरह रो इन्फेक्शन नहीं आवे, अपने जब फार्म डालते हैं नया तो भी टाइम डालना, जब नया जब चूजा खरीद लावा जठों भी तो वीरो भी आपने ध्यान रखना पड़े कि जठों भी आप ला रहा वो 3 महीना तक या 4-6 महीना तक बैठे कोई बीमारी नहीं आई हुए, इसी जगह ले रहा हुआ जी वाहन में आ रहे हो वो वाहन भी
0: इन्फेक्शन
3: साफ सुथरो हुए, तो ये सब चीजा ध्यान रखना पड़े। इमें अंदर घुसनों पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड फुट बाथ वगैरह आप अंदर हैंडलर करना वाला वे मास्क वगैरह गम बूट वगैरह वे पैर जावे, ये सब बहुत जरूरी है। तो आऊ बायो सिक्योरिटी जैव सुरक्षा आरी मुर्गी फार्म री जरूरी।
0: बिल्कुल सर, कुल मिलाकर साफ सफाई की जी भूमिका है वह महत्वपूर्ण है। और चाहे आवन जावन जो भी वाहन है वो चाहे जठे भी पशु दड़बे में रहे दीदी भी साफ सफाई रो भी बहुत महत्व है।
3: बीरो बीरो लीटर जो आप नीचे बिछड़ो हुआ है बीरो भी बहुत ध्यान रखना हुआ है साफ सफाई रो बिल्कुल।
0: पर अब एक डॉक्टर साहब आपसे मैं और पूछना चाहूंगा कि संतुलित आहार और साफ पानी मुर्गिया रोग से बचाव में किन भात सहायक रहे हुए।
3: संतुलित आहार अपने न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट हमारे राजूवास में भी है और जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर्स है बहु बातचीत कर रही, जब भी आप फार्म डालो पशु फार्म तो वो पूरो प्रोटोकॉल है न्यूट्रिशन रो, चूजाऊ लेर जन्मू लेर और आगे जू जू उम्र बढ़े भी जू और ब्रॉयलर रो अंडा देवन री टाइम का ही आहार रहना चाहिए। क्लाइमेट रे हिसाब भी सर्दी गर्मी में थोड़ो बहुत बदलाव आहार में लानो चाहिए, बारिश रे टाइम में कहीं है बीमारियां वैक्सीन, तो वो सब जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट है हमारे राजूवास विश्वविद्यालय में भी आप संपर्क कर सको और नियर जो नजदीक आप रहे पशु चिकित्सक है वह भी संपर्क कर और एक प्रोटोकॉल रे तहत ही आहार देवा। पेयजल भी बहुत सुरक्षित होना चाहिए, अन्यथा बीमारियां सकला पशु मुर्गियों आर इंसाना मासी आदमी मासी बहुत खतरनाक रूप भी ले लेवे कई बार, तो आहार और पेयजल रो बहुत संतुलित रूप में ध्यान रखना पड़े। ऑल आउट ऑल इन भी एक प्रक्रिया अपनानी चाहिए, मुर्गिया ने एक साथ 2-3 महीना में एक साथ सारी मुर्गिया ने आपने बेच नयो लोट ले आना चाहिए, लंबे टाइम तक मुर्गिया नहीं रखना, थोड़ी थोड़ी कर बेचा एक टाइम एक साथ सब बेच दो, तो ऑल आउट ऑल इन नियम है और वापस लाना 3 सप्ताह तक खाली रखो, पहले सप्ताह में भी बीरो लीटर चेंज करो, दूसरे सप्ताह में बीरी दीवारा इवारा सब डिसइंफेक्टेंट साबुन डिटर

0: टू साफ करो, तीसरे सप्ताह में वहां पर कलर वलर कर, तीन सप्ताह बाद में पाछो दूसरो लीटर लानो चाहिए, तो ये सब भी ध्यान रखकर।
1: कुल मिलाकर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि ऑल इन और ऑल आउट बात अगर आप ध्यान रखा, फिर तीन सप्ताह डॉक्टर साहब बताए, छोटी छोटी बातें हैं पर आप वास्ते बहुत ही महत्व बातें हैं, और इन बातें अगर आप ध्यान रख सा तो देखो आप जो इन्वेस्टमेंट पीसो जो लगे अच्छे भुगतान भी होता रहसी, नी जन देखो बीमारी है बड़ी नुकसान दे हुआ करे,
2: और इन नुकसान रो जो बचाव है वो उपचार है।
1: हाँ
2: है, और इन वो क्या करें कि भाई उपचार जो है बचाव जो है वो कौन कर सके, जो हो सजग।
1: हाँ,
2: और सजग आदमी जिका करे सवाल।
1: हाँ
2: है, तो देखो सर गौरव भाई है जो कागज में लिखकर भेजे सवाल, गौरव भाई कहे कि भाई जे कोई मुर्गी माए रोग रा लक्षण दिख जावे तो मुर्गी पालक है उन्होंने किसा किसा काम है जिसका तुरंत करना चाहिए जल्दी सु, ताकि उन्होंने जी मुर्गियां वे बचोड़ी रहे।
1: बढ़िया सवाल है,
0: बहुत बढ़िया सवाल है किसान भाई। इस सवाल रो एक मतलब इनिशियल जवाब हो दे कि आपने सब पहले तो जो नजदीकी डॉक्टर है वीकन तुरंत आप टेलीफोन नंबर रखो, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो आपने कहने फोन नंबर पर पशु चिकित्सक रहना चाहिए, तुरंत संपर्क करो, आप जो भी लक्षण दिख रहा है तुरंत माने बताओ, और अगर वो डॉक्टर साहब बटे विजिट कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक पक्षी ने पूरा प्रोटोकॉल रसाते मारे बैठे ले जाओ, दिखा दो लक्षण और जिया बताओ बिया आप ट्रीटमेंट लो, आप हिसाब कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, आप हिसाब ट्रीटमेंट दे तो गड़बड़ आगे और फैल सके वा बीमारी, तो इसो काम नहीं करनो, तो डॉक्टर साहब संपर्क कर, और राजू वास टोल फ्री नंबर है 1880-6624 वहां पर भी आप संपर्क कर सको, और धीनेरी बातें टाइम टाइम देखता रहो तो वहां में भी काफी बातें आप बतावा, तो ध्यान रखे पशु भाई पशुपालक भाई और मुर्गी पालक तो काफी राहत मिल सी।
2: तो डॉक्टर साहब एक सवाल और दिमाग रे माने आवे की टोल फ्री नंबर है उन्हारे मायने कोई रात बरात भी फोन कर सका की?
0: बिल्कुल भी तो 24/7 है।
2: अच्छा।
0: लेकिन रात में 9 बजे तक तो हमारे बैठे डॉक्टर भी उपलब्ध रहे।
2: अच्छा।
0: फिर बाद में भी कोई इमरजेंसी है तो निश्चित रूप में आपने चाहे 12 बजे भी करनी पड़े तो जरूर आपने उपलब्ध रहे सी, 24/7 सेवा उपलब्ध है राजुवासरी तरफ।
1: गणकरा महाराज का पशुपालक भाई बहन काम में भी लेवे है। ठीक है सर, और अब एक चालती चालती बेला एक डॉक्टर साहब एक प्रश्न और है कि छोटा और मध्यम तबके रा मुर्गी पालका ने रोग नियंत्रण और रोकथाम रे बाबत आप कई संदेश देना चाहो सा?
0: बिल्कुल साहब, छोटा मुर्गी पालक भी आपने बैकयार्ड पोल्ट्री फार्म हुए घर रहे पीछे बाड़ा में भी छोटा बड़ा रूप में नहीं कर सके, छोटा रूप में मुर्गी पालन करे तो बिहार इन्वेस्टमेंट आर्थिक रूप इतना सक्षम नहीं हुआ कि बहुत बड़ा स्तर पर करवा, तो माने वैक्सीनेशन रो जरूर ध्यान रखना चाहिए, पशु चिकित्सक आजकल सरकार फ्री वैक्सीनेशन भी कर रही है, तो पशु चिकित्सालय में संपर्क कर और वैक्सीनेशन फ्री वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, और बीरे अलावा भी अगर कोई बीमारी आ जावे तो तुरंत पशु चिकित्सकों संपर्क कर, और जरूर पशु चिकित्सक होंगे वो आपको उपचार उपलब्ध कराएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्वच्छता का ध्यान रखें, अगर स्वच्छता होगी खान पान उसका न्यूट्रिशन, अभी आप पूछो पहले मैंने खान पान और पेयजल मारो स्वच्छ हो सी एकदम साफ सफाई रहसी और तरीका राखो तो बीमारी आप पर आवे ही नहीं, तो इसको काम ही नहीं पड़े बीमारी रो वो आप ध्यान रखो।
1: तो ये देखो छोटी छोटी बातें हैं, फिर बारज करूं कह दे खान पान है और स्वच्छता है, दूसरा है ऐसा कि आप समय समय पर टीकाकरण करा।
2: हाँ।
1: और समय समय पर आप डॉक्टर साहब से राय लेता रहे तो आप जो काम धंधा है वो अच्छा चाली और पशु भी आप रहा है वह भी स्वस्थ रहसी, और अब जो बखत है वो इशारो कर रही है आज्ञा लेवण रो,
2: और मेरी जी की कदर है और सम्मान है वो तो सकला ने करना ही चीज।
1: बिल्कुल सर, तो भैया मैं आपने बता दू आज आप बातचीत करी मुर्गी प्रमुख रोग और रोकथाम रा उपाय इन विषय पर, और आज अपन जानकारी देवन सर उपाध्याय राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर सु सहायक आचार्य डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब आप चौपाल में पधार्या, हमारे पशुपालका ने बहुत बढ़िया जानकारी दी, इन सर मैं आपने देवा धन्यवाद और करा
2: राम राम सा।
0: राम राम सा।
1: तो आप ही आकाशवाणी बीकानेर ढोला मारू चैनल की प्रस्तुति ढेणेरी बातिया कार्यक्रम रहा संयोजक श्री अमित सिंह और प्रस्तुति ही श्रीमती बरखा थानवी व्यास की, सहभागिता थी राम सहाय हर्ष और चंद्रशेखर जोशी री, तो सा हमें महने आज्ञा दिराओ सा घणान घणा राम राम सा।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर।

0: फिर
1: काकी साहब छाछ नहीं दो तो कोई बात नहीं, पर आज मुंडा उतार के यहाँ बैठे हो।
2: काहे करूँ दाबू बेटा, भैंस को दूध भी कौन दियो और विरोध जिसोरो भी कौन।
1: बस इतनी सी बात। आप सुनो आकाशवाणी से कार्यक्रम धीरे नहीं बातिया। काकी साहब कार्यक्रम सुनने सुनी सी पशुपालन से जुड़ी हो रही सारी समस्या का समाधान
3: प्रत्येक माह के तीसरे गुरुवार को शाम 5:30 पर सुनिए राजस्थान के आकाशवाणी के सभी केंद्रों से एक साथ राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर का प्रायोजित कार्यक्रम धीरे बातिया।

अभी आप सुन रहे थे धिनारी बाता हमारे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।

0: स्थानीय समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंटकोमा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026

0: is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
1: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
2: रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
1: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया है कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Subhadra Ramachandran. Prime Minister Narendra Modi today held a series of high-level meetings with leading French business leaders in Paris as part of efforts to deepen India-France economic and industrial cooperation. Speaking to Akashvani after the meetings, top executives highlighted the growing opportunities in India and announced plans for deeper engagement with the country. Our correspondent covering the Prime Minister's visit reports that discussions focusing on manufacturing, artificial intelligence, sustainability and maritime infrastructure.
4: Saint-Gobain chairman and CEO Benoît Bazin said India is emerging as a major manufacturing and export hub for the Asia-Pacific region. He highlighted the company's investment in low-carbon technologies and energy-efficient building solutions to support India's net-zero goals. Mistral AI CEO Arthur Mensch said the company is keen to strengthen support for Indian languages, expand AI research partnerships and explore greater collaboration on sovereign AI. He also indicated plans to expand the company's presence in India. CMS CGM Chairman and CEO Rodolphe Sade said India is rapidly developing as a hub for green shipbuilding. He welcomed company's decision to build 6 LNG-powered vessels in partnership with Indian shipyards and said discussions with the Prime Minister also covered logistics, ship recycling and deep sea port development. The meetings underscored growing economic and technology cooperation between India and France. This is Mahesh Sopre, Akashwani News, Paris, France.
3: The Prime Minister also met CEO of Alstom, Martin Sean. In a social media post, the Ministry of External Affairs said that the discussions between them focused on opportunities in mobility and railway modernization. Prime Minister Narendra Modi is attending the Viva Tech 2026 alongside French President Emmanuel Macron this evening. He will lead a series of high-level engagements at the summit, culminating in a highly anticipated keynote address that highlights India's skyrocketing global digital footprint. We now go over live to listen to the Prime Minister's address.
0: For physical documents in India anymore, such as your driving license,

आज रात 10 बजे आप सुन सकते हैं राजस्थान दर्शन, आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे। किसान भाई अपनी पसंद का कार्यक्रम सुन सकते हैं चौपाल शाम 7 बजे, और 7:30 पर सुनिएगा सीमा डेरी गूंज। कुछ फिल्मी नगमों का आनंद लीजिएगा आज रात 8:00, 9:30 पर और रात 10:30 से।

सुगम संगीत का वक्त रहेगा रात 9:15 पर। हमारे आज के कलाकार होंगे अभिजीत भट्टाचार्य। ये थी हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका प्रसारण समय। और ये अब सुनते हैं हमारी कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम और उनका भी प्रसारण समय। कल सुबह 6:05 पर आप सुन सकते हैं श्री रामचरितमानस और भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन सुनिएगा कल सुबह 6:15 पर। कुछ बातें कुछ गीत ये कार्यक्रम आप सुन सकते हैं कल सुबह 7:00।

हमारे एफएम चैनल पर कल सुबह 10 बजे सुनिएगा हेलो डॉक्टर में डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी एसोसिएट प्रोफेसर मनोचिकित्सा विभाग मथुरादास माथुर अस्पताल जोधपुर से संजय व्यास की बातचीत। विषय रहेगा वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य। प्रस्तुति एवं संयोजन रहेगा राजेश लामरोड का। हमारे सूर्य नगरी चैनल पे आप लोक संगीत सुन सकते हैं कल सुबह 10 बजे और दोपहर 12 बजे। सुगम संगीत का आनंद लीजिएगा कल सुबह 10:30 पर, दोपहर 12:30 पर और रात 9:15 पर। कृषि जगत का वक्त रहेगा कल दोपहर 1:05 पर और महिलाएं अपना कार्यक्रम गणगौर सुन सकती हैं कल दोपहर 1:15 पर। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम सुनिएगा कल दोपहर 2:30 पर। युवा श्रोता अपनी पसंद का कार्यक्रम सुन सकते हैं युवाणी हमेशा की तरह कल शाम भी 5 बजे। किसान भाई अपना कार्यक्रम चौपाल सुन सकते हैं कल शाम 7 बजे और 7:30 का वक्त रहेगा सीमा डेरी गूंज कार्यक्रम का। मन चाहे गीत श्रोताओं के ईमेल और पत्रों पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुनिएगा कल रात 10 बजे से। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण, ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं समूह स्वरों में देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे समूह स्वरों में देशगान। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं संस्कृत में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्याः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृत्वा वीवाटेक 2026 इत्यस्मिन् कार्यक्रमे भागं गृह्णाति। केन्द्रम् अस्मिन् आर्थिक वर्षे 26,000 किलोमीटर मितानां ग्रामीण मार्गाणां निर्माणाय 18,900 कोटि रूप्यकाणि विनियोजयति। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानः नीट यूजी इति पुनः परीक्षायै सर्वान् सम्बन्धान् अधिकारिणः जागरूकाः भवेयुरिति निर्दिष्टवान्। अमेरिका ईरान देशाभ्याम् आगामि षष्टि दिन पर्यन्तं व्यापक शान्ति सन्धि वार्तायां सहमतिः प्रकटिता। अपि च न्यूजीलैंड देशे एफआईएच महिला नेशंस कप इति हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अन्तरालेन विजित्य उपान्त्य चक्रं प्रविष्टम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणः भारत फ्रांसयोः आर्थिक औद्योगिक सहकारं प्रगाढं कर्तुं प्रयत्नस्य भागरूपेण प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पेरिस नगरे प्रमुखैः फ्रांस देशीयैः वाणिज्य नेतृभिः सह अनेकानि उच्चस्तरीय मेलनानि कृतानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य पेरिस नगरे आल्स्टोम संस्थायाः मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा मार्टिन सियोन इत्यनेन सह मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे विदेश कार्य मन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आल्स्टोम इत्यस्य मुख्य कार्यकारी अधिकारिणः च मध्ये आयोजिता चर्चा मोबिलिटी इति अथ रेल आधुनिकीकरणस्य अवसरेषु केन्द्रिता आसीत्। प्रधानमन्त्री पेरिस नगरे मिस्ट्रल एआई संस्थायाः सह संस्थापकेन मुख्य कार्यकारी अधिकारिणा च आर्थर मेन्स इत्यनेन सह अपि मिलितवान्। सामाजिक प्रसार माध्यमे प्रधानमन्त्रिणा भारतस्य वर्धमान एआई इति पारिस्थितिक व्यवस्थायाः अवसराणां विषयेऽपि अवधारितम्।

0: संस्थायाः अन्तर्गतं प्रोत्साहिताः 80 प्रतिशतात् अधिकाः संस्थाः 25 न्यूनाः लघुद्यमाः अपि सन्तीति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य उक्तवान् यत् भारतस्य सांस्कृतिक धरोहरस्य संरक्षणं संवर्धनञ्च नवोत्साहेन वर्धमानमस्ति। सामाजिक अन्तर्जाल माध्यमेन प्रकाशिते सन्देशे तेन उक्तं यत् विरासत भी विकास भी, विरासततः अपि विकासोऽपि इति दृष्ट्या प्रेरिताः प्रयासाः जनान् भारतस्य सनातन परम्पराभिः पुनः संयोजयन्तीति। आगामिषु चतुर्पञ्च दिनेषु तेलंगाना, ओडिशा, झारखण्ड, विहार, छत्तीसगढ़ इत्येतेषु केषुचित् भागेषु नैऋत्य प्रावृतः अग्रे गमनाय परिस्थितिः अनुकूला अस्तीति भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अवदत्। ऋतुविभागानुगुणं असम, मेघालय, उपहिमालयीय पश्चिम बंग क्षेत्रं, सिक्किम राज्येषु च अग्रिमेषु चतुर्षु दिनेषु महतीतः अतिमहती वृष्टिम् अनुवर्तितुं शक्नोतीति अनुमन्यते। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्ताः। एफआईएच महिला नेशन्स कप हॉकी स्पर्धायां भारतदलं उरुग्वे देशं 3-2 इति अन्तरालेन पराजितवत्, उपान्त्यचक्रं प्रविष्टञ्च। अयं भारतस्य निरन्तरं तृतीयः विजयः अस्ति। तिसृषु स्पर्धासु विजयं प्राप्य भारतदलं पूल ए इति मध्ये शीर्षस्थानं प्राप्तवत् तथा उपान्त्यचक्रं प्रविष्टवत्। उपान्त्यचक्रे भारतदलस्य साम्मुख्यं चिली कोरिया देशयोः मध्ये भाविना स्पर्धायाः विजेतृदलेन सह भविष्यति। फीफा विश्व चषक क्रीडायाम् अद्य रात्रौ संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य एटलांटा क्रीडांगणे ग्रुप ए क्रीडायाम् चोकोस्लोवाकिया देशः दक्षिण अफ्रीका देशेन सह स्पर्धिष्यते। क्रीडा रात्रौ 9:30 आरभ्यते। पश्चात् स्विट्जरलैण्ड देशः संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य लॉस एंजलिस क्रीडांगणे रात्रौ 12:30 ग्रुप बी क्रीडायाम् बोस्निया हर्जेगोविना दले सम्मुखी भवतः। फीफा विश्व चषक स्पर्धायां कोलंबिया देशस्य विजयः इति वार्ताः।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं पहले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। 6:42 पर जिले की चिट्ठी और 6:47 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
2: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15,00,000 से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देशभर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
3: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2,400 करोड़ रुपए का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15,00,000 से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
2: केंद्रीय उपभोक्ता

0: मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
1: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
2: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसीफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18,86,00,000 रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक

0: स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,488 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आरएसी जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में ये कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरुवाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी

0: पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के आठों नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्वार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री केके विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालूतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री केके विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालूतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालूतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
1: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम भैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ई पीओएस मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख हूं बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षावा कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत

0: रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रूपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगां ने देवेला। एणु नौकरी धंधा रा 15 लाख बत्ता मौका मिलेला। श्रम रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जतका देशभर माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में ए कार्यक्रम जयपुर समेत 7 ठोड़ा रख्या जावेला।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रूपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बधावणो और अन्न ने हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा में बोल रहा है। वे कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवाणो अन्न पात्र लोगां ताई पुगावण माए साफ कोई मजबूत हुई है। श्री जोशी कहो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत करीब 98% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस मशीना रे जरिए करियो जा रियो है। मंत्री कहो कि तकनीकों अपात्र लोगां नी पिछाण माए मदद मिली है, जदके एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल आखा देश माए प्रवासी लोगां सारू अन्न मुहैया करावणो तय कीनो है।
2: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ई साल भी हज यात्रा ने घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल री हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाई ची मीटिंग पछे खबर नवीसा सके बातचीत कर रहा है। रिजिजू बतायो कि ई साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय री ओर दो इनाम दिया गया। वे बतायो कि सरकार आवता साल री हज यात्रा सारू नुवी नीति रो ऐलान करेला। केंद्र सरकार चालू माली साल माए गांवाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़का बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलां रा तहत आ सड़का सारू 18,900 करोड़ रूपये उम्बत्ती रकम राखी ची है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए भी मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यां रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और ए कारखाना पूरा बूताऊं काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रा बारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहकां ने देरी जी।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले 3 दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहे हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR News और फेसबुक मत है AIR News राजस्थान।

0: स्थान पर आए सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियां ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। ई फैसला उ नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचो मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18 करोड़ 86 लाख रुपया रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। ई रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी में विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावन और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रा तहत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानाओं खेती री कुल जमीन कमो कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष सी आर चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता थका कहो का इनो किसाना री आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तहत हरियाली बधावन और जमी हेठ पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी व पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया काम माए स्थानीय और हल्का रे अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट यूजी 2026 परीक्षा साफ गोई सागर करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करण री कोशिशा ने करडायू रोकी जावेला। एनटीए उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 1446 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबरनवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा ने जानकारी दीनी। वे कहो का आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावा टेम सर करावण सारू खास कोशिशा कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47 लाख बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 बत्ती परीक्षावा करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम रखा जा रहा है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हूं पहली आज जयपुर माए मुख्यमंत्री रा रहवास माथे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इन माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आरएसी रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास कीनो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर माए वारा रहवास माथे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास कीनो व लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित रखने री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावनु चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम रखियो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर मुजब आवता 24 घंटा में प्रदेश रा उगनी हल्का में गरज चमक सागे

0: बारिसरा आसार है जदका आतुणी हल्का माए कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला माए तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ माए ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागर याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज ही कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरु सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली माए देश माए 200 ठोड़ा क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण ईपीओएस मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा माए तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़िया ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। आरपीएससी लारला एक साल माए 47 लाख उम्बत्ता उम्मीदवार सारू 187 उम्बत्ती परीक्षा में कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर। शाम के 7 बजे हैं। आइए अब सुनते हैं किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल।

0: चौपाल कार्यक्रम सुनाला सगला हेतालु श्रोताओं ने घने मानसू गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा रा राम राम, राम।
0: दीनदयाल भाई कई हालचाल है, कई नवी ताजी है जानकारी?
1: जानकारी री बात करा गुरविंदर भाई, तो आपनो प्रोग्राम ही अड़ो है कि जिकार मायने आपा रोज सिंजिया 7 बजिया जिकी री उड़ीक रिया करे कार्यक्रम चौपाल री आपना श्रोताओं ने, तो उन माने आपा इन प्रोग्राम रे मुजब कई तरह री जानकारियां देवा, कई तरह री बातां करा, हताया करा और साथ ही साथ आपा गीत संगीत रे माध्यम सु कराणो मनोरंजन।
0: उभरते हुए भारत री गांव री देश री चमक और विदेशा रे मायने भारतीय री धमक, ऐसा बात साथियां मिले नवा इन कार्यक्रम में जीरो नाम है चौपाल।
1: बिल्कुल सर।
0: बदल तो भारत, बदलते भारत रे लोगारी तस्वीर और बदलती हुई सोच रे साथ है इन चौपाल कार्यक्रम में कोशिश करा कि एक बढ़िया जानकारी आपने देवा
1: और साथ ही साथ करा आपरो मनोरंजन।

0: गीत संगीत सुरमय जका सौंधी माटी रा गीत है। और कह नहीं कि संगीत री कोई सीमा नहीं, वह धोरे माते जका डावड़े री गर्मी रे साथे आंधी आवे री सिरके जना उन रेत रे कणरो जको सुरमय संगीत है वो भी इन कार्यक्रम के जरिए आपने सुनाउन रो करा प्रयास। दीनदयाल भाई देखो के बदलते भारत की तस्वीर जकी है उरो सारो जको दामोदार है वो भारतीय युवा रे माथे।
1: हाँ सर,
0: जका मोटियार है वन इन देश ने आगे लेन जानो है, खास तौर माते 20 लेन 30 साल आ रहा है।
1: बिल्कुल है सर, युवा शक्ति जी की है भारतरी बा वास्तव रे बाय ने आज जी को भारत एक बार फिर सु विश्व गुरु बनने कगार माते खड़ो है और पूरी तरह से आगे बढ़ रियो है, तो उनो दारोमदार वास्तव रे मायने भारत री युवा शक्ति रो है और भारत ने युवा शक्ति रो इस देश के वे, क्योंकि आज री तारीख रे मायने विश्व रे मायने सबो ज्यादा युवा मारे जी की संख्या है बा भारत रे माय उपस्थित है।
0: देखो कि आपानी अर्थव्यवस्था री गणना र कैलकुलेशन कट हीच कोनी, कदे 10वें स्थान माते कदे 15वें स्थान माते, लेकिन बदलाव आयो और आज आप चौथे 5वें स्थान माते हां और बहुत जल्दी आप दुनिया री तीजी बड़ी जकी
1: अर्थव्यवस्था
0: अर्थव्यवस्था बनना। दीनदयाल भाई जका भी अपना खिलाफ देश हुए खिलाफ जकी दुनिया है उगेरो लगातार प्रयास ओई जे रहे कि भाई भारत इतनी तेज गति विकास किकर कर गयो है, किकर कर आनी इद लोगा रे बीच में फूट गाला, किकर कर आरे मायने बदलाव लावा, किकर कर आनी अर्थव्यवस्था रे माथे प्रहार लावा। तो सरकार मुझे ई में भी बड़ा सतत प्रयास है कही है कि कई गैर सरकारी संगठन मदद कई हजारों करोड़ों लाखों डॉलर जो है विदेशों अठे आवेर अठेरे जका गरीब लोग है वारे माते एवे खर्च कर वाणी मानसिकता वाणी जकी परिवेश और परिदृश्य है उए ने बदलने को प्रयास करे। तो सरकार ये रे माते भी बहुत कठोर कदम उठायो
1: उठानो पड़े,
0: तो के दुनिया अगर वो कदम उठा रिया है उरी पूरी तैयारी है तो पूरी दुनिया रे मायने एकदम है कि भारत वो निर्णय कर की कर सके। देखो कि एक टाइम एडो हो के विदेशी पया ने लेने वास्ते आप ललायत रहता और आपने साथ आजाद वेड़ा कई देश तो हाल भी की मांगे और एक भारत वो कह रही हो कि नहीं भाई मारे देश रे मायने आने वाले हर पैसे रो हिसाब किताब इन तौर तरीकों होवेला और कोई बिना मकसद मारे देश में पैसों नहीं भेज सकेला। तो वह जका गैर सरकारी संगठन जका जिन मुझे पैसा मंगावे नहीं उवे में बहुत व्यापक बदलाव आ गयो है, उवे नहीं सोच में बदलाव आ गयो है, सरकार रे नियम रे बदलाव रे साथे साथे जका दूजा देश है नी वने दिमाग में भी आ गयो है कि भारत हमें दुनिया ने नहीं धारण वालो है।
1: बिल्कुल धारण वालो इस वास्ते भी नहीं है क्योंकि भारत री जी की बढ़ तोड़ी उभर तोड़ी शक्ति है नी गुरिंदर भाई, और साथ ही जी को एक सशक्त नेतृत्व है वह

0: अपने आप रे मायने एक बहुत बड़ी अहम मुद्दारी बात है। और नेतृत्व सक्षम होवे और जनता रो साथ होवे नहीं पूरो, तो निश्चित रूप से नेतृत्व जो है या सरकार जी की है बा देश ने आगे बढ़ो ने वास्ते पूरी तरह पूरी सक्षमता हूँ आप काम करिया करे। तो आज स्थिति आज री तारीख रे मायने बनी है और भारत रो परचम जी को है विश्व रे मायने लहरा रियो है आपरी काबिलियत रे दम रे माते। और सब मोटी बात है कि आज विश्व रा बड़ा बड़ा देश जी का है वे अपने आप ने आगे बढ़ो रे वास्ते भारत री तरफ उम्मीद भरी नजरों देखे।
1: मेरे साथ यहाँ आज तारीख 18 जून गोवा क्रांति दिवस और सतत पाक कला दिवस आज रे दिन खास मुजब मनाई जे। और खाने पीने री बात करा, खावण खंडा री बात करा तो भारतीय लोगा रो जो को पेट है हाजमो कमजोर है रे पेट मजबूत है। आ कावत अपनी दुनियादारी में यार देखो कितनी भात भात रा पकवान अपने अठे पड़े।
0: बिल्कुल सर।
1: तो पाक कला रो अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखा नहीं दीनदयाल भाई तो आज करीब 5,000 साल पुराण भी आपने पाक विद्या होती इन्हें भाई खाने पीने तो जोड़ियोड़े हो लेकिन उन खाने पीने रे मायने किन तरह रा पौष्टिक पदार्थ शामिल करी जावे जका वैज्ञानिक तथ्य माते सही उतरे।
0: बिल्कुल। और साथ ही साथ गुरुंदर भाई किया करें कि भारत में षड रस यानी कि 6 प्रकार रा भोजन मानी जाए, चूष्य है, खाद्य है, चरवणीय है, इन तरह करण अलग पेय है। तो अलग अलग प्रकार रा खाद्य मानी जोड़ा है और बेना अलग अलग प्रकार रा रस मानी जोड़ा है। वे रसारे आधार माते जिको आयुर्वेद रो अपनो पुराणो सिद्धांत चले उन्हें आधार माते वे चीजा चालिया करे और उन्हें माध्यम से शरीर ने स्वस्थ राखन रे हतर प्रयास करी जा करे।
1: बिल्कुल। और देखो कि अगर आप देखा कि आपने जीवन चर्या रे महीने कई चीजें इन तरह शामिल है जो सतही आपने स्वास्थ्य वर्धक राखे। और दीनदयाल भाई हर भौगोलिक क्षेत्र रो खान पान अलग हुए।
0: बिल्कुल सर।
1: हर भौगोलिक क्षेत्र जिसके खान पान तौर तरीका है वे भी अलग हुए। अब जका समुद्र तटीय है जका समुद्र माते निर्भर करे तो वे समुद्री जीव जंतु माते निर्भर करे। लेकिन अगर आप पश्चिमी राजस्थान या मारवाड़ री बात करा तो धोरा धरती रे मायने सब जकी खाद्य पदार्थ री जकी है नी उए में भाई आज अगर 50 या 100 साल पहला तो दूध।
0: बिल्कुल। दूध दही रो तो
1: दूध दही खाटो राबड़ी ने बाजरी रा होगरा काचर मतीरा बोर।
0: बिल्कुल सर।
1: कई चीजा है आर माते अगर अब रिसर्च देखे तो कई जगह कहनी है चौकाउन वाला परिणाम आपने देखना
0: मिले।
1: हाँ मोटो अनाज है बाजरी।
0: हाँ बिल्कुल।
1: लेकिन आयरन री मात्रा सब ज्यादा बाजरी
0: एर मायने जाए और नुकसान भी नहीं करे सब मोटी बात है। आज की तारीख मायने भी आज जटे लोग शुगर रा पेशेंट है डायबिटीज रा पेशेंट है बाजरी यूं तो क्या करे मिठास हो बाजरी मायने लेकिन एड़ा लोगों ने वास्ते खाने वास्ते बाजरी सजेस्ट करिया करे कि भाई आप बाजरी खाओ तो गेहूं हूं जिका नुकसान है वे बाजरी नहीं है। और बाजरी मोटो अनाज होने कारण पचन रे मायने भी टाइम लेवे तो भूख आसानी उन्हें लागे क्योंकि अटारा मेहनत कश लोग रिया है नी तो सुबह खाड़ी आप रे पाचे हिंजा आप और पाची भोजन करता लोग तो इन बीच रे मायने बने जी की ताकत छह थी गुरिंदर भाई बाजरे के कारण बने मिलती
1: है। बिल्कुल। पाक कला दिवस है तो हम कहें कुकीज है बिस्किट है भाई बाजरी रे बनन लाग गया।
0: बनन लाग गया सब
1: नेकटे वो कोई मॉल रे मायने एकदम को देखियो नी तो मैं कुकीज रखी होड़ी।
0: हाँ
1: चॉकलेट कुकीज बाजरी तो और बड़ी मेरी मांग में पूछी हुई है भी घणाई लेवे
0: घणाई लेवे।
1: और उनी तरह अगर आप सूखी सब्जियां रो देखा तो जो काचर है फड़ी है नी
0: केर सांगरी
1: केर सांगरी है केर कुंबटी है तो ये भी जकी मांग है लगातार बढ़ रही। तो जका अपना किसान भाई वन एक जकी परंपरागत खेती रे साथे साथे कहीं न कहीं आधुनिकता वैज्ञानिकता लानी पड़ी जिनू बनी जकी आजीविका है या जका बना आय रा स्रोत है वे बढ़ सके।
0: एक और कारण है गुरुंदर भाई जो केयर है जो कुमटिया है जो सांगरी है एण मायने कोई तरह रो कई के वहां पाई ने के खनिज दूजो देवनी अलग जरूरत ही को नहीं है नी कोई भी तरह रो केमिकल कोई पेस्टिसाइड्स देवनी जरूरत ही को नहीं
1: है को नहीं। वही हाँ। पेस्टिसाइड रही अगर कोई सब्जी है तो
0: ऐज है इर वास्ते एनी कीमत आज री तारीख रे मायने और मांग भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है विदेशा तक आ रहे मायने जो है लोग एनो सेवन कर रहा है।
1: और ग्रामीण भाइयों जो कथे पढ़िए लिखिया वो आपने ध्यान है कि ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है उन्हें मुझे भी इन आ चीजा री बहुत बिक्री हुई। तब गांव रे महीने कई जगह विद्यार्थी होनार गांव रे महीने छुट्टियों में भी जावे नी तो मैं प्रयास करे कि भाई अठे मिट्टी पानी रो मेल देखा मिट्टी रो परीक्षण करावा देखा कि अपन अठे कई ओपत अच्छी हुए। तो कई एडी कंटीली औषधियां है जबकि पश्चिमी राजस्थान रे महीने उगई जे उगे रे महीने कहीं आय भी बहुत अच्छी हो
0: अच्छी हो सके आय। और आजकल मैं तो कई जगह देखियो गुरविंदर भाई कई जना आईआईटी करियोड़ा लोग कई जना जी का है और आगे बड़ी बड़ी पढ़ाया एमबीए करियोड़ा वे नौकरियां नहीं कर रहा है दूजी जगह और वे अपने आप रो काम कर रहा है खेती बाड़ी रो काम कर रहा है इन तरह

0: देखो वातावरण जो को है वो मैंने पॉली हाउस में आप चाहो जड़ो तापमान चाहो जड़ो वातावरण रख सको, और जो को वैज्ञानिक बदलाव आयो ये ने आत्मसात करना पड़ी। आज उन 10 साल 15 साल पहला कौन होस्तो कि भाई सूरज री बे सौर प्लेटा लगान वे मारो ट्यूबवेल चला
1: हाँ
0: ला,
1: बिल्कुल सही
0: और
1: बात है।
0: आज गांव गांव ढाणी ढाणी सौर ऊर्जा का कनेक्शन हो गया। और तो और जो कारे किसान भाई ने देखियो भाई अट जमीन में घनी ओपत नहीं हुए तो भाई आपरा छोटा छोटा सोलर प्लांट लगा लिया और मासिक बनी जो की है 2 लाख 4 लाख आय भी होगी। तो
1: बिल्कुल
0: क्यों मतलब है कि हर प्रयास जो को नहीं हो वे महीने आप भागीदार बना आगे बढ़न की सोच समझ और सीख लेवा। और जो की पुरानी लकीर फकीर बनियो रहे तो भाई गरीबी घर करी, और लड़का और लड़कियां ने शिक्षित नहीं करा तो वो घर परिवार गरीब रही।
1: बिल्कुल
0: जब तक जिन परिवार री लड़कियां पढ़ लिखन आगे नहीं बढ़ी उन परिवार राज का सार्वभौमिक विकास है वो संभव मुश्किल है। इन वास्ते भाई लोग पढ़ाई लिखाई ना तो जोड़ो। और जकी ये फर्जी बात है जकी बुराई है कुरीतियां है कोजा जका रीति रिवाज है बाऊ आपा ना तो तोड़ आगे बढ़न करा होड़ जनाई आपा एक विकसित राष्ट्र रूप में सन 2047 में खड़ा रेवा।
1: बिल्कुल। और इस वास्ते जरूरत है एक सबो बढ़िया जेकी चीज री बा है आपनो एक तो दृढ़ निश्चय होनो चाहिए कि हाँ माने वो काम करना है। उन बाद मायने होनी चाहिए कि योजनाबद्ध तरीका से काम करने री जगत। और उन बाद मायने तीसरी चीज होनी चाहिए आपरो कठिन परिश्रम। जिन टाइम ए तीनों चीजा मिले ला नहीं गुरविंदर भाई जन भारत ने पाछो जी को है आगे बढ़न कोई नहीं रोक सके। दुनिया री एडी कोई ताकत नहीं है।
0: बिल्कुल। और अताई गणी होगी दीनदयाल भाई हमें कार्यक्रम रो भगत हो रही हो पूरो तो चौपाल कार्यक्रम संपन्न करने चालू आप साथी गुरविंदर बिश्नोई
1: और दीनदयाल शर्मा ने दिराओ सीख।
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।

अभी आप सुन रहे थे किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर।

0: राम राम नवलोमा।
1: अरे बाटू को
0: अरे आज कोई लू लागी हल्ली कोई हो आप। अरे आप हटको डाली उड़ी दे दी मैं। पानी पियो थे पानी पियो।
1: अरे अरे भाईडा हारो उपाड़ गणो
0: हारो उपाड़ तो
1: भाई।
0: ओ तो मैं हूँ नरेश।
1: ओ नरेश
0: ओ एटो बैठो नवलो
1: भाई।
0: लो पानी पियो मैं थारे एक बढ़िया नींबू बनाऊ।
1: नींबू को नींबू मारे हा ऊपर ढूंगो हल्लो
0: तो हाँ अपन ढूंगो लो पंप लो।
1: अरे पंप तो गोली ली। हाँ मैं कहूँ है भाई देख
0: नवलो बा
1: कायमी हुए थोड़ी गर्मी है नी तो मैं कल फिर दो तीन दिन फोड़ा पड़गा। एक तावड़ो पड़े जी कोई गया ने ठाण मा तू छी अंबांधी कोनी। देखो भाई गावड़िया है बलती ही अच्छा भाई मैं तो क्या नहीं ताबड़ तोड़िया जी को बंदनिया थोड़ा नाई की।
0: ओलो
1: अच्छा भाई फाट खुली ही देखो नाई की खासी के हेट जान उठने के तलाव की।
0: अरे नवलो बाप
1: जीव जान भाई फोल दोरी ले रहे हो
0: जाने धारे
1: पसीनो होगवान पसीने बस कहो है भाई तिर लगी जी को हूँ है जो पी लियो पानी।
0: हाँ
1: वो सेंट कर दियो जी को तीन चार दिन यहाँ।
0: हाँ
1: मैं देखे भाई मैं ओ हाँ ऊपर जा दिन बदे।
0: हाँ ऊपर ही बजे नवलो बा के आकाल हैंग दिन या हुड करता।
1: अरे हुड तो हम भाई देखे करना ही पड़ी नहीं तो कह नहीं के भाई जीवना जीते
0: हिवना है बात तो सही है।
1: रिजिया गीत गावता हो
0: गीत तो मैं गावता देखो बरसात रो मौसम है ना मैं चारों और देखो जटी हैंग आपरा कह गाड़ी हड़ लेन जावे खेत बीजो बावे
1: जन पर भाई बावे तो मैं तो बल जद है।

0: जोरदार हो ना बोलबा।
1: हाँ बहुत बढ़िया भाई जी,
0: क्या टाइम टाइम रहा बाजा है।
1: अरे टाइम रखा देख है, जुगो जुग बीत जानी तो ही है जुगो भाई कटिंग है
0: करियोड़ा
1: कटी रहे जा को
0: हाँ नहीं जा
1: ले भाई हम बिगड़वा।

0: नागपुर जलमियानपुर फोतोया
1: हो है गुणा नवलोबा। देखो आज दिन जको
0: बात है, एक बात बार बार मगज में आई,
1: बताओ
0: क्या भाई। देखे हमारा डर मोतियार कद काटी हूँ है जो एकदम क्या नहीं हटो कटो है और हिम्मत भी हटो कटो है बात है तो हमारा खानदान शौक है।
1: ओ क्या जड़ो खावला अन्न वेड़ो वेला मन
0: मन यो शरीर यो टाइम माते बेड़ा रपाया बजे तो क्या नहीं
1: मोती नहीं बजे
0: तो क्या नहीं बाजरी जी मिड़ो वेन मूंग मोट जी मिड़ो वेन तिल है जो क्या नहीं घनी घनी रो तेल वे तो शरीर एकदम क्या नहीं
1: निरोग रहे।
0: अच्छा के खानदान लार हैंग क्या नहीं की भाई हैंग पाता वे तो मैं विगत बार हुना भाई
1: हमें विगत बार हुना नवलोबा के आज दिन देखो के जन्म जयंती है सी विजय राघवाचार्य जी ए जो को हा स्वतंत्रता सेनानी हा और कई तरह जिन टाइम दंगा या नहीं उन टाइम भी सद्भावना रो काम करियो और एक राजनीति रूप में और वकील भी है।
0: तो ठीक भाई बड़ा कह नहीं परोपकारी मिले था और देश ने आजाद करो में कह नहीं आगे वाण लिया अगर अत्याचार जुलम सहन करिया तो अपर वाद करिया तो आने पर बातें पोर धोक देवा कोटि कोटि नमन करान मन रेरा फूल सदा बड़े
1: बड़े नवलोबा। देखो के आज दिन जन्म जयंती है होमी मोतीवाला एक नौकायन भारतीय खिलाड़ी है नाव चलावे जो को और नौकायन वास्ते उन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका
0: है। ओ, हो, ऊंट दौड़
1: हाँ जो
0: घोड़ा दौड़
1: हाँ हागे हागे
0: समुद्र में बैठ
1: समुद्र में नौका चलावे और पच बोने जो को समूह तेज चलावे बोने इनाम देवे।
0: तो भाई आने मुबारकबाद है भगवान हाजत हाजर आके आने
1: हाँ
0: कोटि कोटि है बदई है
1: हाँ
0: बड़े
1: बड़े नवलोबा। देखो कि आज दिन जन्म जयंती है के एस सुदर्शन जी ए भी देखो समाज सेवा और कई तरह जो को है आधुनिक विज्ञान का प्रबल समर्थक हा और राष्ट्र निर्माण और सांस्कृतिक चेतना और जीवन समर्पित हो।
0: हाँ अच्छी बात है भाई के सुदर्शन जी आप भी ठोर मासो का काम करिया तो जागरूकता आई इन्हें बात भली हुई तो आने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ाओ बड़े।
1: हाँ बड़े नवलोबा। देखो के आज दिन जन्म जयंती है शंकर त्रयंबक धर्माधिकारी जी ए भी प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हा और सामाजिक सुधार और आंदोलन नेता हा और महात्मा गांधी जो है अनुयायी हा।
0: हाँ भाई देखे के भाई गांधी जी सिपाही हाल आज जी जीवन में भेड़ा हा तो आरा करियोड़ा काम कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मेरा फूल चढ़ावा बड़े
1: बड़े नवलोबा। देखो अनुग्रह नारायण सिन्हा जी एक प्रकार जो को है एक मोटा भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हा गांधीवादी विचारक और बिहार विभूति नाम है जो है प्रसिद्ध है।
0: हाँ बात अच्छी भाई देखे नेहरा नेहरा प्रदेश प्रांत में गणा जग जावा मिने गोया और बे है जो को है मिल
1: देश और समाज वास्ते काम करियो।
0: हाँ तो आनी कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदिरेरा फूल चढ़ावा।
1: हाँ
0: अरे भाई
1: हाँ नवलोबा
0: लुगई जात की ला रही
1: लुगई जात तो क्यों ला रही आजादी लड़ाई में लुगई हो चाहे मिनक हो चाहे कोई
0: उनको भाई देखे बुंदेलखंड में जब अंग्रेज कब्जो करियो तो झांसी री रानी हुई।
1: ओ ये नवलोबा झांसी रानी ये क्या तो झांसी रानी रे आज परिनिर्वाण दिवस है। हाँ
0: ओ फोत होगा
1: फोत होगा
0: और बात तो भाई सत्ता जोग निकली
1: तो जन हाँ हाची निकली तो हमारा सत्ता जोग
0: तो क्या देखे घनी हार
1: खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी।
0: हाँ तो झांसी री रानी क्या वीरांगना ही
1: हाँ वीरांगना ही
0: और हाथ है जिसको जलकारी भाई आगे उड़िया रही है जिसको आपस में भाई अंग्रेजन चकमो दे देती
1: चकमो दे देती
0: है जिसको झांसी ने कह दी कि भाई अंग्रेजन ने
1: जीव ते जी नहीं हूँ पियो।
0: हाँ तो भाई ये कोई जीत लो कोई कह नहीं अड़ी बिजली कह रही विभूति है तो और कोई वह तो
1: लो हुना नवलोबा।

0: वाह भाई वाह, क्या देखा मन की ताकत
1: बोले बड़े नवलो बदे को के आज दिन आज सिखो रहा जो गुरु अर्जुन देव जी जो पांचवा गुरु है बारो भी आज जो को है के बलिदान दिवस या शहादत दिवस मनाई जा करे। और देखो के मानवता और धर्म रक्षा वास्ते और जो बलिदान है वो जुगो जुग तक याद करी।
0: अरे भाई देखा के गुरु पंत तो मोटो है और ठोड़ ठोड़ माते आज है जी को लंगर सेवा ही हुई ठोड़ ठोड़ माते है जी को कह नहीं कह गुरु जी रो पंथ है जी वो कह खालसा है और अकाल है अलग है
1: अलग है
0: ठीक है नी। तो एड़े पंथ नहीं नमन है गुरु जी नहीं नमन है कोटि कोटि नमन है पर बातें पर धोखदा बड़े
1: बड़े नवलो बात देखो क्या मैं आज रे दिन अली अकबर खान जी जो को है परिनिर्वाण है ये भी एक महान हस्ती है जो को शास्त्रीय संगीतकार है और सरोद वादक है।
0: साज बाज रहा धनी हा तो ऐसो का कह नहीं बाजा बजा गया तो आनी है जो को कह नहीं कह भाई कोई नहीं भूल सके आने आखिर इतना गुल पेश करा कोटि कोटि नमन करा।
1: बड़े नवलो बा देखो आज दिन परिनिर्वाण उड़ो सेठ गोविंद दास जी ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी है और हिंदी रा वरिष्ठ साहित्यकार है।
0: ओहो हेटी विद्वान
1: और संविधान सभा रा सदस्य भी है।
0: लक्ष्मी यारे घर में सरस्वती यारे
1: घर में
0: बस कानून धर्पण में डाल बाबा साहब अम्बेडकर
1: हाथे हाथे कंधा बड़े नवलो बा देखो कि युद्धवीर सिंह जी ये भी एक स्वतंत्रता सेनानी राजनेता और जाने माने क्या के होम्योपैथी रा जो को हा बहुत यूं डॉक्टर हा।
0: ओहो क्या भाई देखो आप भी ठोड़ माचो का काम करियोड़ा मिन कर कोई नहीं भूल सके आने कोटी कोटी नमन है मंदेरा फूल चढ़ाओ भले
1: भले नवलो बा आज रे दिन देखो के परिनिर्वाणी उड़ाए नसीम बानो जी एक भारतीय सिनेमा री बहुत मोटी अभिनेत्री ही और अभिनेत्री ही और महिला सुपरस्टार और जो को आप री खूबसूरती कारण और ब्यूटी क्वीन या परिचारो भी क्या भाई।
0: ओहो भाई तो फूट रहा
1: हाँ
0: और आप ही टाइम मत कह नहीं के क्या भाई अदाकारी करी तई तो मिनक बानी है जो कह नहीं कदी नहीं भूल सके क्योंकि काली बोली इन गूंगी के आवती
1: फिल्म बोलती कौन ने बोलूंगा फिल्म पहली
0: नहीं पहले बोलती कौन नहीं इशारा में होता तो ऐड़ा कह नहीं के
1: तो तई फिर देखता भाई इशारा वाली फिल्म
0: देखता यहाँ पे आप मंदिर हम थे तो कई बात कह दे देखता नहीं तो और कहूँ हमें आज जारी टिकट लावा
1: नहीं आज
0: जारी मार कर्म नहीं देखता यहाँ
1: नहीं पढ़ता बोलता कौन नहीं की करता समझ में आते इनके
0: गूंगे गुंगो चढ़े देखो भाई हमज लेता तो भाई यानी है जो किसी तरह गुल पेश करा कोटी कोटी नमन करा बड़े
1: बड़े आज दिन देखो नवलोबा परिनिर्वाण उड़ो है के भारतीय जो एथलीट उड़ा है महान धावक मिल्खा सिंह जी।
0: ओहो सरदार जी
1: सरदार जी
0: अरे वो मिली उड़ा हूँ
1: सरदार जी ओहो तो दौड़ता ही करना दौड़ता नवलोबा
0: क्या बुढ़ापा में क्या गोडा दुखे क्या मारे यूं दुखे ए तो क्या उड़न
1: कई स्वर्ण पदक दिलाया
0: अरे तो उड़न पायलट
1: हाँ उड़न सिख जो को है वाने कहवे और या क्या उपाधि है और देखो नवलोबा राष्ट्रमंडल खेलों में ओलंपिक खेलों में जो को है कई जगह पदक जीती और राष्ट्रमंडल 1958 खेलों में तो स्वर्ण पदक जीतियो है।
0: अरे भाई ये तो उड़वाने दौड़ता
1: उड़वाना दौड़ता
0: मजबूत कर दिया आज जोग एक तो गुरु अर्जुन देव जी रो है जो को सात दिवस है।

0: अरे आज में दिन फोत होया मिल्का सिंह तो दिन दिन है ना ने बिरला मिनका ने कोई नहीं भूल सके कोटि कोटि नमन है मंदेरा भूल चलावा ए भाई यार मिल्का सिंह मत कोई क्या नहीं है फिल्म बड़ी उड़ी है
1: बनी उड़ी ना
0: कोई दो आंकड़ी गीत सुना
1: लो सुनाऊं बढ़िया।

0: वाह भाई रे भाई, चर को मीठो भेड़ो कर दो।
1: हाँ चार को मीठो भेड़ो कर दियो।
0: हाँ चलो, हाँ ये में डबियो है तू
1: हाँ
0: तो बात बतल करानी जब। हाँ ओले ऊंचो ऊंचो नीचो हो जा
1: जड़े अपना आप वो सही है जा।
0: हो जा बात है दूसरे भाई, क्या नहीं क्या बात मोटी बात रही है।

0: क्या है कि भाई हमें आ तो है बात हूँ तो मैं बात वे कोनी
1: नहीं वे नवलो बाप
0: पर भेड़ो ही धन कराणो पड़ी भाई है जो रसोड़ा की तैयारी कर दो
1: हाँ करू नवलो बाप
0: हूँ फेर दू माड़ा
1: हाँ फेर लो
0: एक दो आंकड़ी कोई है जिस हो तो मैं हूं नहीं तो मारो जीव ठाने आ जाए
1: बालो हूं थाने

0: वाह भाई,
1: हाँ को जी उठाने
0: हमें एकदम क्या,
1: हमें माड़ा फेर लो।
0: हाँ माड़ा फेर,
1: और मैं ही जाऊँ
0: तैयारी करा।
1: हाँ कराऊ मैं,
0: और हूँ है जी को माड़ा फेर बैठो हूँ जी ते भाई थे है जी को क्या नहीं के बस लोग तैयार कर।
1: हाँ करू ना लो
0: बैठू हाथ कर ले और हमें देखे नरेश के तारा ही खासा ऊंचा आई गा नंदा भी पड़गो है।
1: हाँ
0: और प्रोग्राम टाइम ही होगो पूरा तो भाई सेना ले वही
1: राम राम।

अभी आप सुन रहे थे सीमा डेरी गूंज। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत सुनिए, ओम शांति ओम फिल्म से सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज़ में। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है विशाल शेखर का।

कार्यक्रम का पहला प्यारा सा गीत सुना आपने ओम शांति ओम फिल्म से। आइए अब सुनते हैं पाप फिल्म से राहत फतेह अली खां की आवाज़ में एक और बेहतरीन सा गीत।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

उदित नारायण की आवाज़ में राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाज़ में धड़कन फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। नदीम श्रवण का है संगीत, गीत के बोल समीर के।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी, पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: कुमार शानू और साधना सरगम की आवाज में आइए सुनते हैं दीवाना फिल्म से ये गीत। संगीत है नदीम श्रवण का, गीत के बोल हैं समीर के।

कुमार शानू की आवाज़ में आइए सुनते हैं आशिकी फिल्म से एक और प्यारा सा गीत। गुलशन कुमार का है संगीत, मदन पाल के हैं गीत के बोल।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम का अंतिम गीत आइए सुनते हैं बिच्छू फिल्म से। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत है आनंद राज आनंद का।

0: आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले समाचार संध्या और रात 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation at the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी।

0: समाचार पेरिस फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
4: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
5: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
3: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित

0: क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉकेट टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें fcat.edcil.co.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद

0: Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. That's all in the news at 9. Good night.
1: मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी जोधपुर का ये सूर्य नगरी चैनल है। आइए अब सुनते हैं सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं अभिजीत भट्टाचार्य।

0: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
1: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सुन रहे हैं सुगम संगीत हमारे आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार हैं अभिजीत भट्टाचार्य।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। सुगम संगीत में हमारे आज के कलाकार थे अभिजीत भट्टाचार्य। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत। आइए सुनते हैं उदित नारायण और साथियों की आवाज़ में रिफ्यूजी फिल्म से।

कयामत से कयामत तक। आइए सुनते हैं इस फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत, अलका याग्निक और उदित नारायण के स्वर में। आनंद मिलन के हैं गीत के बोल, मजलू सुल्तानपुरी के हैं का है संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे।
1: कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
2: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं बादल फिल्म से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। गीत के बोल हैं समीर के, संगीत है अनु मलिक का।

0: आप जानते हो ना, मोबाइल से लेकर मिसाइल तक आज हर जगह भारत का हुनर बोलता है। अब हम स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप्स, स्वदेशी ड्रोन बना रहे हैं, स्पेस मिशंस को सफल कर अंतरिक्ष में भी तिरंगा फहरा रहे हैं।
1: अनुसंधान से आत्मनिर्भरता, साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस, आज ये हमारा मंत्र बन चुका है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
4: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
3: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
4: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

कयामत फिल्म से भी ये गीत सुना आपने अभिजीत और साधना सरगम की आवाज़ में। गीत के बोल थे समीर के, संगीत था नदीम श्रवण का। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का एक और खूबसूरत सा गीत, विजय फिल्म से लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाज़ में। निदा फाजली के हैं गीत के बोल, संगीत है शिव हरी का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं राजस्थान दर्शन। आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: पल पल

आवाजें सीमाओं, पर्वतों और समंदर के आर पार छनती रहीं। इसी क्रम में आकाशवाणी बना आपका हमसफर, चलते फिरते, सोते जागते, काम करते, कहीं भी कभी भी। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए ऑल इंडिया रेडियो का ऑफिशियल लाइव स्ट्रीमिंग मोबाइल ऐप ऑल इंडिया रेडियो लाइव अब उपलब्ध है तीनों मोबाइल प्लेटफॉर्म्स यानी एंड्रॉइड, iOS और विंडोज पर। इन पर आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के 13 चैनल जिनमें शामिल हैं विविध भारती, उर्दू सर्विस, AIR, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, बांग्ला और रागम चैनल। साथ ही आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड और FM रेनबो चैनल भी। इस मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए जाएं आकाशवाणी की वेबसाइट पर यानी विजिट करें allindiaradio.gov.in। तो अब आप जहां भी हैं, हम भी वहीं हैं आपके साथ हमेशा, देश और दुनिया भर में कहीं भी।

0: अरे सरला, ये मुंह अंधेरे हाथ में बोतल लेके कहाँ जा रही है?
1: जंगल जा रही हूँ दीदी, और कहाँ। इससे पहले कि दिन निकले उजाला हो, मैं जंगल में जाके आ जाती हूँ।
0: पर तू जंगल क्यों जाती है? तेरे घर में तो शौचालय बना हुआ है ना?
1: बना हुआ तो है दीदी, पर उसमें तो उपले रखे हुए हैं, और उस शौचालय में एक बार शौच के लिए जाने का मतलब है 3 बाल्टी पानी खर्च करना। तुम्हें तो पता है ना कि मैं पानी कितनी दूर से लेकर आती हूँ। अब इतनी मेहनत से लाए गए पानी को इस तरह बेकार में ही थोड़ी उड़ेल दूंगी।
0: बेकार में? अरे बावली, जरा सोच, पानी बचाने के चक्कर में तू अपने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को मुसीबत में डाल रही है।
1: तुम्हारी बात मेरी समझ में तो नहीं आ रही।
0: अरे सरला, जरा दिमाग पे जोर डाल कि तेरे मल पे कितनी मक्खियाँ बैठती हैं, और वो ही मक्खियाँ वहाँ से उड़कर कई घरों में जाकर उनके खाने पीने की चीजों पे बैठती हैं, और उन चीजों को जब वो लोग खाएंगे तो क्या वो बीमार नहीं पड़ेंगे?
1: हाय दैया, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ठीक है, घर पहुंचकर आज से ही शौचालय के उपले बाहर निकालकर हम सब उसे काम में लेना शुरू कर देंगे।
0: ये हुई ना समझदारी वाली बात।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर का आमेर चैनल है। मीडियम वेव 497.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर प्रस्तुत है फिल्म संगीत। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में पहला नगमा हमने लिया है कर्ज फिल्म से। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत रचना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, शब्द रचना है आनंद बख्शी की।

हम आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 564.97 मीटर यानी 531 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया है सागर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत के बोल हैं जावेद अख्तर के, संगीत है आर डी बर्मन का।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का एक और प्यारा संगीत, द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से अमिताभ बच्चन और आशा भोसले और साथियों की आवाज़ में। गीत के बोले आनंद बख्शी, के संगीत है राहुल देव बर्मन का।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में सिलसिला फिल्म से अभी ये गीत सुना आपने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत आकाशवाणी जोधपुर के सूर्य नगरी चैनल से। आइए अब सुनते हैं रजिया सुल्तान फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा गीत। गीत के बोल हैं जानिसार अख्तर के, संगीत है खयाम का।

आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत नगीना फिल्म से मोहम्मद अजीज की आवाज में। गीत के बोल हैं आनंद बख्शी, के संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी जोधपुर का सूर्य नगरी चैनल है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे पहले हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से इसे हम रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: The message I shared then at Viva Tech 2020.

0: वन वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प. इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी. फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर.
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे. उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए. भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा. इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की. इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई. बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया. उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है. श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके. उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है. प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे. विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है. विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केन्द्रित रही. उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है. शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया. इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है. ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमरीका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है. उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है. यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है. एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है. रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया. रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए. हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं. मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया. कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे. वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं. उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.